एफएम बैंड की 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 10वीं तिथि, तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ. जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्रैम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी।

0: आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।

0: है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि दयानंद सरस्वती का ये विचार है कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना हमारी सबसे बड़ी भूल है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 205। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता विविध भारती के खजाने से, इसके अंतर्गत गायिका आशा भोंसले से की गई बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। सुबह 7:00 का समय है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 पर चित्रलोक कार्यक्रम। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार, जो केंद्रित होगा संगीतकार अनिल बिस्वास पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनिए अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की बातचीत। सुबह 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। प्रसारण समय याद रखिए सुबह 11:00 कार्यक्रम मन की बात। दिन में 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। एक बजे का समय है कार्यक्रम सुरीला सफर के लिए और 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम सुनिए दिन में 2:30 पर और दिन में 3:00 आप सुनेंगे मन चाहे गीत। नाट्य तरंग, इस कार्यक्रम में नाटक अग्नि चक्र का दूसरा भाग सुनिए। मूल मलयालम लेखक हैं C.L. जोस, हिंदी नाट्य रूपांतरकार हैं P.G. वसुदेव और निर्देशक हैं भारत रत्न भार्गव। इस कार्यक्रम का प्रसारण समय दिन में 3:30 पर। शाम 4:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, सुनिए कवि प्रदीप की सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30

20 मिनट पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता। शाम 7 कार्यक्रम होगा विशेष जयमाला, सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा। इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट जनरल जोरवर चांद बख्शी की शौर्य गाथा आपको सुनवाई जाएगी। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, सुनिए नाटिका मूड। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और रात 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार राज खोसला पर। रात 10 कार्यक्रम होगा छाया गीत, 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 कार्यक्रम विविधा। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है रामचरितमानस गान भाग 205।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी, देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विह्वल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

0: मित्रों नमस्कार। संगीत सरिता में आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए हैं ऐसा नायाब हीरा जिसकी रोशनी से, या कहें कि जिसके अलग अलग पहलुओं से उठती किरणों से हम सभी की आंखें चकाचौंध हैं। ये कार्यक्रम वर्ष 1982 में पहली बार प्रसारित किया गया था। आइए उस दिन को ताजा करें। संगीत सरिता कार्यक्रम की संकेत धुन वही जो 1982 में हुआ करती थी और उद्घोषणा भी उसी दिन की। आइए सुनते हैं।
1: यह आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती। संगीत सरिता। आज आप सुनेंगे हमारा संगीत सरिता का विशेष कार्यक्रम। आज हम आपको मिलवाते हैं सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से। भेंट कर रही हैं डॉक्टर अचला नागर।

0: आशा जी, यूं तो आप सुगम संगीत की गायिका के रूप में जानी जाती हैं, लेकिन आपकी आवाज का जो पकाव है बतलाता है कि इसके पीछे शास्त्रीय संगीत की लंबी साधना रही है। क्या ये सच है?
1: साधना साधना तो है, लेकिन ज़्यादा अगर क्लासिकल हम बहुत ज़्यादा रियाज करें, जैसे कि क्लासिकल सिंगर करते हैं, यानी 8-8 घंटे तक गाना, अगर इतना रियाज अगर सुगम संगीत वाले करें तो उनके आवाज़ में वो लोच और एक मुलायम जो होती है मुलायमियत, वो रहती नहीं है। इसलिए हमें उतना रियाज नहीं करने दिया गया, लेकिन हमने रियाज किया है। रियाज यानी सुबह बहुत जल्दी उठना अंधेरे में और खर्च लगाना, उसके बाद एक

0: घंटे तक कम से कम हम लोग मतलब मैं रियाज करती थी।
1: तो आपको मतलब घर में ही किसी से शिक्षा मिली या?
0: जी हाँ, मेरे पिताजी, मैंने आपको मालूम ही होगा,
1: जी हाँ
0: दीनानाथ मंगेशकर जी क्लासिकल सिंगर थे। उनसे हमें थोड़ा बहुत सीखने को मिला, क्योंकि मेरी बदकिस्मती से बहुत जल्दी, मैं छोटी थी जब वो चल बसे। उसके बाद मैं मास्टर नवरंग जी से गाना सीखती रही, और व्यास संगीत विद्यालय की मैंने 4 किताब की परीक्षा भी दी है। अब वो किताबों की जो परीक्षा दी थी, अब मुझे वो सब याद नहीं है। और उसके बाद बड़े गुलाम अली खान साहब, इनका आए ना बालम, ये गाना मैं कॉपी किया करती थी।
1: अच्छा
0: मुझे उनका गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और नज़ाकत सलामत, इतना हर तरह से बेहतरीन गाना, बहुत मुश्किल होता है। मेरी नज़र में बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर हैं वो।
1: अभी आपने बहुत चोटी के संगीतकारों के कुछ के नाम लिए आशा जी, तो मैं ये आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि आप क्लासिकल की बहुत जानकार है, मुझे मालूम है आप संगीत के कलाकार हैं, लेकिन एक श्रोता तो ही, सुरों का आपको ज्ञान है। ये जो खान साहब की, गुलाम अली खान साहब की जो आवाज़ थी, उसकी क्या चीज़ आपको अपने मतलब व्यक्तिगत रूप से आपको क्या पसंद थी?
0: देखिए, एक तो संगीत के लिए, गाने वाले के लिए पहली चीज़ चाहिए वो आवाज़ और सुर, तान स्पष्ट, और जो बोल हैं, अगर वो ठुमरी गा रहे हैं तो वो बोलों के अदायगी क्लासिकल गाते हुए भी, तान लेते हुए भी इतनी अच्छी करते थे कि वो मन को लग जाती थी। बचपन से मुझे, मैं छोटी थी तब, तो उनके मैं गाने सुनती थी, तो मुझे यही लगता था कि इनकी मींड उतनी ही अच्छी है, उतनी तान भी स्पष्ट है, छोटे कण कण दिखा के वो चीज़ को लेते थे। वैसे नज़ाकत सलामत, उनके जितना फास्ट तान मैंने आज तक सुनी नहीं। इतनी फास्ट तान और सरगम उतनी ही उनकी फास्ट थी, और जब वो स्लो गाते थे तब भी उनका संतुलन आवाज़ का, और तान जब फंस जाते थे तब का, वो कमाल का था मेरी नज़र में, एक आर्टिस्ट की नज़र
1: हाँ जी, वैसे देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीत और हमारा फिल्म संगीत दो अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों को मिलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी एक अहमियत है, महत्व है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जिन कुछ फिल्मी गानों में शास्त्रीय संगीत का पुट दिया गया है, वो सालों साल वैसे ही ताज़ा रहते हैं, सुनते हैं तो तब ऐसा लगता है कि कानों को वैसे ही मीठे लगते हैं। तो ये बताइए कि शास्त्रीय संगीत का उपयोग कहाँ तक फिल्मी गानों में किया जा सकता है?
0: पहली बात तो ये है अचला जी, कि शास्त्रीय संगीत से हर गाना बनता है। शास्त्रीय संगीत नींव है, फिर इमारत खड़ी रहती है। तो आप कोई भी गाना लीजिए, उसमें शास्त्रीय संगीत होना बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे आप कहती हैं कि सुगम संगीत में शास्त्रीय संगीत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप एक शुद्ध राग रखेंगे तो वो एक जैसा लगेगा। जैसे मालकंस का गाना, अगर आप 4 गाने बनाएंगे तो एक जैसा लगेगा, क्योंकि वो जो सुर हैं वो ही रहेंगे, इसीलिए वो एक जैसा। लेकिन उसमें अगर दूसरे सुर मिलावट करेंगे तो वो थोड़ा अलग लगेगा और अच्छा लगेगा। और फिल्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि राग में मिलावट करें, और बहुत खूबसूरती से मिलावट करें तो बहुत अच्छा लगता है।
1: मतलब ये कि ज्यादा उसमें आलाप और मुर्कियां और हरकतें ये नहीं होना
0: नहीं,
1: चाहिए।
0: हरकतें मुरकतें सब हो,
1: हाँ
0: लेकिन एक राग की, जैसे 7 सुर, एक कोई भी राग लीजिए आप, अगर वही सेम राग में अगर आप 10 ट्यूनें बनाएंगे तो वो एक जैसी लगेंगी,
1: अच्छा,
0: इसलिए मिलावट करने से वो अलग अलग लगेंगी और अच्छी भी लगेंगी।
1: एक सवाल है तो बहुत साधारण, लेकिन आपके मुंह से ही इसका हम उत्तर सुनना चाहते हैं कि जैसे कि नियमित रूप से किसी का पेशा है गाने का, वो रोज गाता है, गाया आके वापस लौटा है, लेकिन उसके लिए भी क्या जरूरी है कि वो तानपुरा छेड़े और आवाज को खोले, रियाज करे?
0: जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो भगवान ने दी हुई आवाज़ होती है वो उम्र के 20 साल तक रह सकती है। उसके बाद उसमें कंपन आने लगेगी, उसमें वो जोर नहीं रहेगा। इसलिए हर सिंगर को सुबह उठ के रियाज करना चाहिए और अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। जैसे कि सिगरेट पीना, इससे भी गले में,
1: अच्छा,
0: सांस में फ़र्क पड़ता
1: जी
0: है। ये सब चीज़ें संभालनी चाहिए, और रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है मेरी नज़र में। रियाज़ करना चाहिए, क्योंकि आज तक मैं भी रियाज़ करती हूँ।
1: जी धन्यवाद आशा जी, आपने अपने अनुभवों के आधार पर संगीत साधना करने वालों के लिए एक

0: अनमोल बात कही है कि स्वर की साधना बहुत आवश्यक है। और अब ये संगीत सरता कार्यक्रम के श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में आपने सुप्रसिद्ध गायिका आशा भोसले से एक भेंट वार्ता सुनी। भेंट कर रही थी डॉक्टर अचला नागर।
3: मित्रों, कई बार हमें लगता है ना कि लता जी, आशा जी यदि शास्त्रीय संगीत की कोई रचना गाएं तो कितना अनूठा लगेगा। लेकिन डॉक्टर अचला नागर से आशा भोसले की ये जो बातचीत हमने सुनी उससे कई बातें स्पष्ट हुई। उनके लिए शास्त्रीय संगीत तो संभव था ही, लेकिन नवरसात्मक प्रतिभा की पहचान बनाने वाली सुगम संगीत के समंदर की मलिका की ये आवाज जो है, इसकी जितनी दाद हम देंगे वो कम होगी। मित्रों, आइए आशा भोसले के गाए दो गीत के अंश सुनते हैं। पहले सुनिए कारमा फिल्म का गीत, जिसमें स्केल यानी सुर पट्टी बदलकर आशा जी ने क्या खूब गाया है।

और आइए अब सुनते हैं एक और फिल्मी गीत का अंश। फिल्म है विजेता और ये गीत पूरी तरह शास्त्रीय संगीत पर आधारित है।

विविध भारती के खजाने से आज आप सुन रहे थे मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले से बातचीत। इसके साथ ही आज का हमारा ये संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। ये कार्यक्रम सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। पहला जो गीत है ये किस्मत फिल्म का गाना अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाज़ों में, कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का। आज इन गीतों के माध्यम से संगीतकार अनिल बिस्वास को उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीज़ें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ज्वार भाटा फिल्म का ये गाना, अरुण कुमार और साथियों की आवाजें, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, संगीत अनिल बिस्वास का।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, एहसान रिजवी के बोल और संगीत है अनिल बिस्वास का।

बेकसूर फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, लेकिन अभी इस वक्त कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। जासूस फिल्म का गाना, आवाज़ आशा भोंसले की, इंदिवर के बोल, संगीत अनिल बिस्वास का।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और अनिल बिस्वास का संगीतबद्ध किया ये गाना गीता रॉय की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हीर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए छोटी छोटी बातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, धुन बनाई अनिल बिस्वास ने।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज़, प्रेम धवन के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत, फिल्म का नाम राही।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं APJ अब्दुल कलाम के इस सुविचार से, सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद।

और अब जानकारी लेते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आज ही के दिन यानी 31 मई को इतिहास में घटित हुए। 1774 में आज ही के दिन भारत में पहला डाक सेवा कार्यालय खोला गया। 1959 में आज ही के दिन बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई। 2010 में आज ही के दिन भारत में मान्यता प्राप्त हर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने का कानून बनाया गया।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का जन्म आज ही के दिन 31 मई को हुआ। हिंदी फिल्मों में शीर्ष निर्देशक, निर्माणकर्ता और पटकथाकारों में से एक राज खोसला का जन्म आज ही के दिन 1925 में हुआ। मराठी रंगमंच में क्रांति लाने वाले प्रसिद्ध नाटककार अण्णा साहेब किर्लोस्कर का जन्म आज ही के दिन 1843 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक केके का निधन आज ही के दिन 2022 में हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास का निधन आज ही के दिन 2003 में हुआ।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। रोहतास जिले में पड़ रही गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन रोहतास ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि गर्म हवाओं एवं लू के प्रभाव से बचने के लिए सभी नागरिकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन द्वारा लोगों को सतर्क रहने तथा आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि लू एवं अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभाव से बचा जा सके। वर्तमान मौसम परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं एवं बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। गर्मी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे तथा शरीर में पानी की कमी न होने दे। हल्के रंग के ढीले ढाले एवं सूती वस्त्र पहने। भोजन में हल्का एवं पौष्टिक आहार ले तथा तरबूज, खरबूज सहित पानी युक्त फलों का सेवन करें। इसके अलावा सत्तू, पुदीना, सौंफ एवं खस जैसे पारंपरिक खाद्य पदार्थों को भी दैनिक आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, सिर दर्द या तबीयत खराब जैसी समस्या महसूस हो तो तत्काल चिकित्सीय परामर्श लें। प्रशासन द्वारा बताया गया है कि लू लगने के प्रमुख लक्षणों में चक्कर आना, घबराहट होना, दिल की धड़कन तेज होना, अत्यधिक पसीना आना, सिर दर्द, बेहोशी, तेज बुखार, शरीर की त्वचा का अत्यधिक गर्म हो जाना एवं जी मिचलना शामिल है। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तथा तत्काल चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। बच्चों एवं पालतू जानवरों को बंद वाहनों में अकेला नहीं छोड़ने, घर एवं कार्यस्थल को यथासंभव ठंडा रखने तथा बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखने की भी सलाह दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। किसी भी आपात स्थिति में लोक सहायता हेतु टोल फ्री नंबर 101 एवं 112 पर संपर्क कर सकते हैं। रोहतास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा गर्मी व लू से बचाव के लिए विशेष तैयारियां और व्यवस्थाएं की गई हैं, परंतु गर्म हवाएं लगने पर निम्न बातों पर ध्यान रखें। लू लगे व्यक्ति को छांव में पैर ऊंचा कर लिटा दें तथा तंग कपड़ों को ढीला कर दें। शरीर के तापमान को कम करने के लिए कूलर पंखे से हवा करें। ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोछे एवं ठंडे पानी से नहलाएं। रोगी को ORS घोल, नींबू पानी, साधारण पानी, नमक पानी का घोल पिलाएं। यदि व्यक्ति पानी की उल्टी करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने को न दे तथा तुरंत सरकारी या नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में ले जाएं। कल दिनांक 30/5/2026 को माननीय प्रभारी मंत्री रोहतास सह अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रोहतास सह माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विभागवार समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त रोहतास के द्वारा DRDA सभागार में उपस्थिति सभी माननीय को पौधे लगे गमले भेंट करते हुए स्वागत किया गया तथा सभागार में उपस्थित सभी माननीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन सदस्यों की समस्याओं से अवगत होते हुए बैठक की कार्यवाही विभागवार शुरू की गई। उनके समस्याओं से अवगत होने के पश्चात विभागवार निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया गया, जो निम्नवत है। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

रेफरल अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाए, साथ ही स्वयं नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करें तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित ऑपरेटरों एवं कर्मियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करें। माननीय के द्वारा आयुष्मान कार्ड से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के क्रम में सिविल सर्जन के द्वारा प्रेक्षाक्रम में बताया गया कि जिले में 3,66,326 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 54% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। निर्देश दिया गया कि इसकी प्रचार प्रसार कराते हुए जल्द से जल्द इसकी संख्या का बढ़ाने की आवश्यकता है तथा सहयोग शिविर में पंचायत स्तर पर इसकी अलग से काउंटर लगाकर आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्या का निदान कराना सुनिश्चित किया जाए एवं नए आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। जिन जिन प्रखंडों में अभी तक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन का निर्माण कार्य अधूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द मरम्मतीकरण कराकर स्वास्थ्य भवन में चिकित्सीय कार्य प्रारंभ किया जाए। माननीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में आयुष्मान कार्ड से इलाजरत अस्पतालों की संख्या की बढ़ोतरी की जाए। जिला पदाधिकारी रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक डिहरी को निर्देश दिया गया कि जिले में आए दिन हो रहे साइबर क्राइम को तत्काल रोकने की आवश्यकता है, महिला एवं बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है तथा उनसे संबंधित केस की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पॉस्को के दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जिले में CCTV कैमरा की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हो रे क्राइम शीघ्रता से कार्रवाई किया जा सके। डायल 112 में कार्यरत वैसे पुलिसकर्मी को लगाने की आवश्यकता है जो ट्रेंड एवं अनुभवी हों। ऐसे लोगों की प्रतिनियुक्ति कर डायल 112 प्रचार प्रसार कराने की आवश्यकता है, ताकि इसके प्रयोग करके समय पर लोगों की मदद पहुंचाई जा सके। बैठक में राशन कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि जिन राशन कार्डों को निरस्त किया गया है उनकी पुनः जाँच कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही नए राशन कार्ड के नाम पर दलाली करने वाले तत्वों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाने तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया गया। शिक्षा विभाग ने छात्रों के अपार कार्ड निर्माण को लेकर अभियान तेज कर दिया है। इस संबंध में प्रखंड स्तर पर विद्यालय प्रधानों व शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्ड बनाने में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यालयों को प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। कई विद्यालयों में छात्रों का पंजीकरण कार्य शुरू कर दिया गया है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से डाटा अपलोड किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार की मंशा शिक्षा व्यवसाय को पूरी तरह डिजिटल एवं पारदर्शी बनाना है।

डेहरी थाना क्षेत्र में सरकार के नियमों को ताक पर रखकर संचालित अवैध कोचिंग संस्थानों के विरुद्ध बीईओ डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बिना रजिस्ट्रेशन संचालित आधा दर्जन कोचिंग संस्थानों को बंद कराया। वरीय पदाधिकारियों को कार्रवाई के लिए अनुशंसा पत्र भेजा। भभुआ में आने वाली खरीफ फसल के लिए तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही है। कहीं कहीं किसान बिचड़े की तैयारी में जुटे हैं, कहीं फसल की रोपनी से पहले खेत की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि किसानों का रुझान अब फिर से प्राकृतिक और पारंपरिक विधि की ओर बढ़ रहा है। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म भूल भुलैया से। आवाज़ के की है।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आईएएस अधिकारी योगेश और अभिलाषा निलंबित, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेंडर घोटाले में किंग पिन रिशोश्री से लाभ पाने और रिश्वत लेने के आरोप में राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। इनमें 2017 बैच के आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और 2014 बैच की अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। योगेश वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत निशक्तता निदेशक के पद पर थे, जबकि अभिलाषा ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर थी। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी होंगे सीडीएस, आज संभालेंगे कार्यभार। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का 3 साल और 8 महीने का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया। उन्होंने अपने इस कार्यकाल को बेहद संतोषजनक बताया। रविवार को सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी देश के अगले सीडीएस के रूप में कार्यभार संभालेंगे। विदाई के अवसर पर जनरल चौहान को तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज बेंगलुरु व गुजरात में होंगे खिताबी मुकाबला, इस खबर को सभी अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। सभी विश्वविद्यालय में एक समय पर एडमिशन

परीक्षा और रिजल्ट, इस खबर को प्रभात खबर ने सुर्खी बनाते हुए लिखा है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। लोक भवन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। नामांकन और रजिस्ट्रेशन 1 मई से शुरू होगा। एडमिशन 30 जून को समाप्त होगा। वहीं द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम और अष्टम सेमेस्टर जनवरी से जून का नामांकन 4 से 9 जनवरी तक होगा। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, शिव कुमार विधायक दल के नेता 3 को लेंगे सीएम की शपथ। कर्नाटक में नई सरकार गठन की दिशा में तेजी से कदम उठाते हुए शनिवार को विधान सौध में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के प्रस्ताव और डॉ. जी परमेश्वर के समर्थन से प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। राजद और सरकार में 10 सर्कुलर रोड आवास पर तकरार, इस खबर को सभी अखबारों ने फ्रंट पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, 10 सर्कुलर रोड आवास पर राजद और सरकार में ठन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आवास खाली करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 15 दिन की मोहलत दी है। इस अवधि में आवास ही खाली नहीं हुआ तो कानून सम्मत कदम उठाए जाएंगे। इस मामले में NDA और राजद नेताओं में सियासी तकरार छिड़ गई है। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, CUET UG ने छात्रों को परेशान किया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG 2026 परीक्षा शनिवार को देश भर में लाखों छात्रों के लिए परेशानी की वजह बन गई। कई केंद्रों पर परीक्षा निर्धारित समय से 2-2.5 घंटे देरी से शुरू की जा सकी। पहली पाली में गड़बड़ी के बाद दूसरी पाली का भी समय बदलना पड़ा। इस दौरान नोएडा, अम्बाला समेत कई जगह गुस्साए छात्रों और अभिभावकों ने हंगामा भी किया। NTA ने तकनीकी खराबी को इसकी वजह बताते हुए छात्रों को हुई परेशानी पर खेद जताया। दावा किया कि दिक्कत अब दूर कर ली गई है, किसी अभ्यर्थी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। NTA की ओर से CUET UG 2026 की शुरुआत 11 मई से हुई है और यह परीक्षा 31 मई तक चलेगी। इस बीच NTA ने बताया कि पहली पाली में तकनीकी खराबी के कारण 3,700 से अधिक छात्र परीक्षा नहीं दे सके, उन्हें परीक्षा में दोबारा शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। बैंकों को ग्राहकों को देनी होगी रिकवरी करने वाली एजेंसी और एजेंट की सारी जानकारी। 1 अक्टूबर से लागू होगी लोन रिकवरी से जुड़े RBI के नए नियम।

अहमदाबाद में आज बादशाहत का फैसला। 2 महीने की दौड़, दर्जनों मुकाबले और अनगिनत उतार चढ़ाव के बाद आईपीएल 2026 का कारवां आखिर अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अब रविवार को गुजरात टाइटंस और बेंगलुरु रॉयल चैलेंजर्स के बीच फाइनल मुकाबला तय करेगा कि किस इस सीजन में ट्रॉफी किसके हाथों में चमकेगी। अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गत चैंपियन बेंगलुरु लगातार दूसरा खिताब जीतने उतरेगी, तो 5 साल में तीसरी बार फाइनल में पहुंचे गुजरात टाइटंस अपने घर में वर्चस्व कायम करना चाहेगी। इस लड़ाई में 2 कप्तानों शुभमन गिल और रजत पाटीदार की भी परीक्षा होगी। अपनी टीमों को फाइनल में पहुंचाने में इन दोनों की अहम भूमिका रहेगी। नजरें विराट कोहली पर भी होगी, जो आईपीएल इतिहास में 9000 से ज्यादा रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं। और अब मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 31 मई के दौरान जिले के 1 या 2 स्थानों पर लू चलने की संभावना है। इसके बाद जिले में 1 या 2 स्थानों पर मेघगर्जन वज्रपात 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 70 से 75% एवं 20 से 25% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान अवधि के दौरान 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूर्वी हवा चलने की संभावना है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र।

0: आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने को किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। मौसम विभाग का बुधवार तक केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डर कर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई।
3: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत

संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों

0: शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब ₹1.50 प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर ₹13.50 प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क ₹9.50 प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार यह फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
2: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचन क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों

0: को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान गुजरात हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले दो दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमेरिका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। आईपीएल के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर आरसीबी का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में दुबके रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति

0: उम्मी नौलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए केसरी फिल्म का गाना। आवाज़ है बी प्रांग की, मनोज मुंताशीर की रचना है, धुन बनाई है आरको ने।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे केसरी फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे इन श्रोताओं के पसंद पर। आप हैं ब्रह्मपुरा मनीगाछी से भाई अच्छे लाल राय, श्रीमती पानो देवी, मुकेश कुमार राय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। आप सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गाना, आवाज़ महेंद्र कपूर की, साहिर लुधियानवी की रचना है, धुन बनाई है रवि ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हमराज से। अगला गाना फिल्म कभी कभी से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार। साहिर की रचना है, धुन बनाई है खयाम ने। इस गाने को सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाटापारा दत्रिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। इंदिरा पिहार रायगढ़ से वसीम अक्रम नूरजहां, डब्लू अक्रम नूरजहां, वली अक्रम नूरजहां, उल्हा अक्रम नूरजहां। राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिपा तिवारी।

कोहिनूर फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। शकील बदायूनी की रचना थी, धुन बनाई थी नौशाद ने। इस गाने को सुनना चाहा था। कलीर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकत प्रवीण, सदा फारजो, साहिल अरमान, मशकूर आलम, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीशा। थाना चिनारी, ग्राम खुरमाबाद बाजार से रामजी प्रसाद चौरसिया, लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया, सन्नी कुमार चौरसिया, राहुल कुमार चौरसिया एवं इनके घर के समस्त चौरसिया परिवार। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म नागिन से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर, राजेंद्र कृष्ण की रचना है, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं थाना मोड़ गढ़नों का रोहतास से।

सपना भाई मंसूरी, नजबुन निशा सद्दा मंसूरी, नगमा निशा लाल बाबू, सिमरन अली अरबाज मंसूरी, सैफ अली शबाना और शाहबाज। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं संपन्न हुआ। आज का ये सुरीला सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो सखी यानी मेरे साथ संगीता के साथ, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत दो आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। इसके तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के

0: केंद्र से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार विशेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेशालय के दस्तावेजों के आधार पर अनुचित लाभ लेने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। निलंबित अधिकारियों में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक योगेश कुमार सागर तथा वर्तमान में जीविका की अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में कार्यरत अभिलाषा कुमारी शर्मा शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही जारी रहेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष और सही मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की आधारशिला होती है। आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित कानूनी परामर्शदाताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बूथ स्तर के अधिकारियों और बूथ स्तर के एजेंटों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे मतदाता सूची को सही और अद्यतन रखने में अहम योगदान देते हैं। श्री कुमार ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का भी उल्लेख किया और कहा कि इन राज्यों में कड़ी चुनावी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। उन्होंने देशभर की अदालतों में निर्वाचन आयोग का पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं और कानूनी परामर्शदाताओं के समर्पण और मेहनत की सराहना की। लोक भवन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से यूनिफॉर्म अकादमिक कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अब एक समान शैक्षणिक कैलेंडर लागू होगा। नामांकन से लेकर परीक्षा तक की सभी प्रक्रियाओं की तिथियां निर्धारित रहेंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने सभी विश्वविद्यालयों को इस कैलेंडर का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में शैक्षणिक कैलेंडर से विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 1 जुलाई से होगी जबकि नामांकन की और पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी कर ली जाएगी। इस पहल का उद्देश्य उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए दूसरी चयन सूची जारी कर दी है। प्लस टू विद्यालयों में सत्र 2026-28 के लिए चयनित विद्यार्थियों को 2 जून तक अपने आवंटित विद्यालयों में नामांकन कराना अनिवार्य होगा। समिति ने कहा है कि नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की ओर से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल कल से सक्रिय की जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन तथा पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विद्यार्थियों को सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा।

0: आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्सेंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।
4: दिनांक 31 मई राज्य के पश्चिम के शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर प्रदेश के कई भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पटना सहित राज्य के अधिकांश जिलों में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की संभावना है। पटना के दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आज अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया। 24 सप्ताह के कठिन सैन्य प्रशिक्षण के बाद 1025 अग्निवीर जवान औपचारिक रूप से भारतीय सेना में शामिल हो गए। परेड के दौरान अग्निवीरों ने देश सेवा, अनुशासन और समर्पण की शपथ ली। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरुओं द्वारा अग्निवीरों को गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर राष्ट्र सेवा के प्रति निष्ठा और समर्पण की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बिहार रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर तथा समीक्षा अधिकारी मेजर जनरल जय सिंह बैसला सेना मेडल ने परेड की सलामी ली। गोपालगंज की MP/ML अदालत ने जदयू विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक की सीमा 5 जून तक बढ़ा दी है। न्यायालय ने एक अन्य अभियुक्त भोजपुरी गायक गुंजन सिंह को भी 5 जून तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिले के सिमराव गांव में एक कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित हथियार प्रदर्शन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भोजपुर पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग से करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में ग्रामीण बैंक के 3 खातों से लगभग 8 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न बैंकों के 19 पासबुक समेत कई दस्तावेज बरामद किया है। इधर अररिया में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस छापामारी अभियान में फरार अपराधियों और मादक पदार्थ के तस्कर सहित 41 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से 27 मई को गयाजी शहर के 10 केंद्रों पर हुई दरोगा बहाली मुख्य परीक्षा में मोबाइल के जरिए चोरी कराने वाले गिरोह का उजागर किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में गयाजी के रामपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले की पुलिस ने धौड़ाद थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुए लूटकांड के मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले की पुलिस ने केसठ पुरानी बाजार चिमनी मोहल्ला के पास से 2 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन।

0: और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कटिहार में आयोजित बिहार राज्य अंडर 13 शतरंज प्रतियोगिता में पटना के देवांश केसरी शीर्ष पर चल रहे हैं। इस प्रतियोगिता में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी देवांश ने मुजफ्फरपुर के सिद्धार्थ शांडिल्य को पराजित कर 5.5 अंकों के साथ बढ़त प्राप्त की है। आईपीएल क्रिकेट की फाइनल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
1: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार मामलों में आईएएस योगेश अभिलाषा सस्पेंड। अखबार लिखता है, रिश्वत कमीशन और अनुचित लाभ लेने का आरोप। दैनिक जागरण का शीर्षक है, नीट यूजी और सीबीएसई के बाद अब सीयूईटी यूजी में भी गड़बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा खामी का शिकार। पहली पारी की परीक्षा 2 घंटे देरी से शुरू हुई, दूसरी पाली का पेपर भी 1 घंटा लेट। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, एक देश एक चुनाव 2029 से पहला चरण 2034 तक पूरा चक्र। प्रभात खबर ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली कराने के मामले की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, राबड़ी बोली फोर्स भेजकर बंगला खाली करवा लें, कुछ देर बाद ही पुलिस पहुंची। आज अखबार ने मौसम से जुड़ी खबर को अपनी लीड बताते हुए लिखा है, बिहार में कल 5 डिग्री चढ़ेगा पारा। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, राज्यभर से मिले आवेदनों की निगरानी के लिए विशेष कोषांग का हुआ गठन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया, नया शुल्क कल से लागू। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 2 आईएएस अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा को किया निलंबित। और मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सिवान, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के 12 जिलों में आंधी बारिश का जारी किया अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यंग समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव। मन पर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का कार्यक्रम अंकुर लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 10:05 पर। भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी हम पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार का समय होगा सुबह 10:45 पर। शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से, समय होगा शाम 5:10 पर। कार्यक्रम वंदन से विज्ञान एवं पर्यावरण, इस कार्यक्रम को हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:30 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6 बजे से। भोजपुरी समाचार बुलेटिन आपको सुनवाएंगे शाम 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। गांव घर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे शाम 6:10 पर। इस कार्यक्रम में आज चर्चा होगी तंबाकू सेवन से हानियां इस विषय पर, साथ ही आप लोकगीत का आनंद भी लेंगे। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे शाम 6:40 पर। गुड इवनिंग रोहता सुनिएगा शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचार आपको सुनवाएंगे शाम 7:25 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद लेकर हम हाजिर होंगे शाम 7:50 पर। भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9 बजे से। गजलों की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। हिंदी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग सुनिएगा रात्रि 10 बजे से। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने सुनने ना भूलिएगा रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। गीत मालिका कार्यक्रम के तहत लीजिए सुनिए।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: बीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: फ्री वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: आरबीआई कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट

इसी गीत के साथ गीतमालिका कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो दूर हटो दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था।

कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम

के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: मेरा बुलबुल सो रहा है शोरगुल मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

सन 1940 में फिल्म औरत में अनिल बिस्वास ने जो गाना गाया था वो है ये।

0: दे, काहे करता दे, काहे।
1: वैसे इसके अलावा अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल बिस्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
2: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

सन 1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहां उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल बिस्वास पर, शोध लेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक ही सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा, और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को आज नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमा के राष्ट्रपति की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमा के राष्ट्रपति के सकारात्मक प्रयासों की सराहना की। म्यांमा के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। श्री लाइन व्यापारिक मंच को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर ने प्रस्ताव पेश किया था। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंट तथा अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपये और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होगा और 15 जून तक लागू रहेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। वे कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कन्नूर में राज्यसभा सांसद C. सदानंद मास्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की मेधा, करुणा और जन कल्याण के प्रति अटूट समर्पण के लिए आदर और सम्मान के साथ याद करता है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। लीजिए सुनिए नन्हे मुन्ने बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चों को आपके अंजुम भैया का बहुत बहुत प्यार।
1: आपको भी
0: तो बच्चों, आप ये बताइए कि आप आज किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं?
1: अंकुर कार्यक्रम।
0: बहुत सही। तो आप जानते हैं, आपके कार्यक्रम को आपके श्रोता बच्चे भी सुनते हैं। सुनते हैं ना? सुन रहे होंगे ना? तो बच्चों, बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम के पिटारा में होगा, सबसे पहले आप सुनेंगे एक कहानी। कहानी का शीर्षक होगा अच्छाई का फल। क्या शीर्षक होगा?
1: अच्छाई का फल।
0: आप सुनाएंगे कविता, चुटकुला और पहेलियां। हम करेंगे आपसे बातचीत। अंत में एक गीत का भी

0: आज किस कार्यक्रम में उपस्थित हैं?
1: अंकुर कार्यक्रम।
0: बहुत सही। तो आप जानते हैं, आपके कार्यक्रम को आपके श्रोता बच्चे भी सुनते हैं। सुनते हैं ना? सुन रहे होंगे ना? तो बच्चों, बता देना चाहते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम के पिटारा में होगा, सबसे पहले आप सुनेंगे एक कहानी। कहानी का शीर्षक होगा अच्छाई का फल। क्या शीर्षक होगा?
1: अच्छाई का फल।
0: आप सुनाएंगे कविता, चुटकुला और पहेलियां। हम करेंगे आपसे बातचीत, अंत में एक गीत का भी लेंगे आप लोग आनंद। किस चीज का?
1: गीत।
0: तो बच्चों, आप लोग तैयार हैं ना?
1: यस सर।
0: आइए सुनते हैं कहानी। बच्चों, भोलू नाम का एक हाथी के माता पिता का निधन हो चुका था। क्या हो चुका था?
1: निधन हो चुका था।
0: वो हाथियों के झुंड में रहता था, लेकिन कोई भी हाथी उसे पसंद नहीं करता था। कोई भी उस छोटे भोलू को अपने साथ नहीं रखना चाहता था। फिर भी भोलू यथाशक्ति सबकी सेवा करता, वो सबका कहा मानता और उसके छोटे मोटे काम भी करता। एक बार रात के समय हमेशा की तरह हाथियों के झुंड में भोलू सोया हुआ था। सुबह उठकर उसने देखा तो सभी हाथी जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे? जंगल से बाहर। वो अकेला ही रह गया था। क्या रह गया था?
1: अकेला।
0: उसने अपने साथियों को बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिले। थक हार कर भोलू अपनी किस्मत को कोसता रोता हुआ अकेले ही अनजान रास्ते पर चल दिया। तभी एक महाजन ने उसको देखा तो बहुत खुश हुआ। वो भोलू को अपने घर ले गया। कहाँ ले गया? और प्यार से उसकी देखभाल करने लगा। भोलू भी महाजन की एक आवाज पर दौड़ा दौड़ा आता और उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता। क्या देने को तैयार रहता?
1: जान भी देने।
0: जब वहां के राजा को भोलू की अच्छाइयों का पता चला तो उसने महाजन को दरबार में बुलाया और कहा, ये सुंदर हाथी अगर तुम हमको दे दो तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। क्या कहा?
1: मालामाल कर देंगे।
0: महाजन बोला, क्षमा कीजिए, भोलू को पुत्र जैसा प्यार किया है, हम इससे अलग नहीं रह सकते। राजा ने कहा, तुम दोनों के रहने को हम एक महल भी देंगे। क्या कहा राजा ने?
1: तुम दोनों को रहने को एक महल भी देंगे।
0: महाजन ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन भोलू को लेकर राजा के महल में महाजन गया। भोलू राजा को भी खुश करने लगा। एक दिन राजा भोलू पर बैठकर शिकार करने निकल पड़ा। कहाँ निकल पड़ा?
1: शिकार करने।
0: जंगल में थोड़ी दूर पर ही हाथियों का झुंड दिखाई दिया। राजा ने तीर चला दिया। तीर एक हाथी को लग गया। हाथी जमीन पर गिर गया। भोलू ने देखा कि ये तो हाथियों का वही झुंड है जिसने कभी धोखा दिया था। क्या दिया था?
1: धोखा दिया था।
0: जख्मी हाथी आश्चर्य में पड़ गया। भोलू के भाग में राजा ये सोचने लगा। झुंड के सभी हाथी सोचने लगी, गुणवान की कद्र सभी जगह होती है। क्या सोचने लगी सारी हाथी?
1: गुणवान की कद्र सभी जगह होती है।
0: देखिए बच्चों, हाथी के बच्चे ने, भोलू ने सोते हुए ये देखा था कि सभी हाथी के झुंड ने दगाबाजी किया है। वो अकेला छोड़कर जंगल से निकल गया था, लेकिन सेवा भाव से भोलू रहता था। भोलू राजा का इतना चहिता बन गया कि राजा ने भोलू के एक महाजन को भी अपना महल दे दिया। और फिर वही राजा जब भोलू के पीठ पर बैठकर शिकार करने के लिए निकले तो शिकार में एक हाथी के झुंड में एक हाथी को जो है तीर लग जाता है और वो हाथी

0: गिर जाती है, लेकिन जो गिरती आती वो सोचने पे मजबूर होती है कि अच्छे काम का और मेहनत का फल अच्छा होता है, दहेज की भावना, सेवा की भावना अच्छी भावना होती है। तो आप लोगों की ये चर्चा अच्छी लगी ना?
1: यस भैया।
0: इस कहानी से आप लोगों को अच्छी सीख मिलती है ना?
1: जी भैया।
0: बहुत अच्छी। जो अब यहां से हम लोग कविता चुटकुला और पहेलियों की ओर चलते हैं। आप लोग कविता चुटकुला पहेलियां सुनाएंगे ना? अवंतिका आप क्या सुनाइएगा?
2: समय का सबसे कहना है, जीवन चलते रहना है, सदा काम की बात करो, फूल सदा मुस्काते हैं, हमको यह समझाते हैं, जीवन चलते रहना है, दुख भी सुख भी सहना है, कर्म ही जिसकी रीत है, सच्चे जिसको प्रीत है, अंत में उसी की जीत है, समय भी उसका मीत है।
0: बहुत अच्छे। सुजीत आप क्या सुनाइएगा?
3: चुटकुला।
0: चुटकुला सुनाइए। चुटकुला।
3: बेटा पापा से कहता है, कार की चाबी दीजिए, कॉलेज जाना है, फंक्शन है, 10 लाख की गाड़ी में जाऊंगा तो शान बढ़ेगी। पापा ने कहा, ये लो 10 रुपए, 30 लाख की बस से जाओगे तो ज्यादा शान बढ़ेगी।
0: बहुत अच्छे। एक बात सुनिए, किसी भी बच्चे को इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए कि हम 10 लाख की गाड़ी से जाएंगे तो खाली शान बढ़ेगी। और पापा ने चालाकी दिखाया, उस बच्चे को 10 रुपए दिया और कहा चले जाओ 30 लाख की बस से जाए। तो 10 लाख से कहीं अधिक बस की कीमत 30 लाख होती है, लेकिन पढ़ने के समय कॉलेज स्कूल जाना है तो वहाँ पर शान नहीं किया जाता है। शान उस वक्त दिखाया जाता है कि अपनी कमाई से, अपने तरक्की के बाद अगर कुछ करते हैं तो वो शान होती है। होती है ना?
1: जी भैया।
0: बहुत अच्छे। खुशी आप क्या सुनाइएगा?
4: पहेली।
0: पहेली देखिए, खुशी पहेली सुना रही है, आप लोगों को बताना है इसका उत्तर। बताएंगे ना?
1: जी भैया।
0: सुनाइए।
4: आंख नाक पे मैं चढ़ जाऊं, कान पकड़ के तुम्हें पढ़ाऊं।
0: क्या है? कान नाक पर मैं चढ़ जाऊं, इसका अर्थ क्या हुआ? उत्तर सही उत्तर है?
4: जी भैया।
0: बहुत सही। अनन्या आप क्या सुनाएगा?
5: पहेली।
0: पहेली देखिए, अनन्या भी पहेली सुना रही है, आप लोग उत्तर बताइएगा।
5: हरा मंदिर लाल दरवाजा, उसमें बैठे काले राजा, बोलो क्या है वो?
0: बोलिए क्या हुआ? सही उत्तर है?
5: जी भैया।
0: एकदम सही। बहुत सही। अंकिता आपको क्या याद है?
6: चुटकुला।
0: चुटकुला सुनाइए। चुटकुला।
6: माँ बच्चे से, तू पूरे साल नहीं पढ़ता, एग्जाम आते ही किताब में लगा रहता है, क्यों? बच्चा, क्यों? क्योंकि लहरों की सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफान के किस्ते निकालने का मजा ही कुछ और है।
0: एकदम सही। बहुत अच्छे। लेकिन ये समझिए कि परीक्षा के समय ही पढ़ाई की जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे साल भर जब स्कूल में एडमिशन होता है, स्कूल में नामांकन रहता है, वहाँ पढ़ते हैं, घर पर पढ़ना चाहिए। लहरों के आगे बहना ये कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरह के हाल में नाकाम भी हो जाते हैं। होते हैं ना? बहुत सही। रिया आप क्या सुनाइएगा?
7: चुटकुला।
0: चुटकुला सुनाइए। चुटकुला।
7: पिता ने बेटे से कहा, बुद्धिमान लोग बेवकूफ की बातों का उत्तर नहीं देते, केवल हंस देते हैं। बेटा ने कहा, पिताजी इसीलिए हमने परीक्षा में प्रश्न पत्र पढ़ा और हंसकर घर चला आया।
0: ये बताइए कि जब पिताजी बोलते हैं कि बुद्धिमान लोग बेवकूफों का उत्तर नहीं देते, तो बच्चा ये बोलता है, पिताजी इसी कारण हम परीक्षा देने के लिए गए, उत्तर नहीं दिया और घर चले आए। तो बताइए, पढ़िएगा नहीं और प्रश्न का उत्तर नहीं दीजिएगा तो आप पास कीजिएगा?
1: नहीं भैया।
0: गलत बात है। बेवकूफी वहां पर देखने की बात नहीं होती है, बुद्धिमानी वहां पर है कि आप परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए, वो बुद्धिमानी है। ठीक है? अच्छा आपको क्या याद है?
6: पहेली।
0: पहेली देखिए, निशा पहेली सुना रहे, आप लोग उत्तर बताइएगा। सुनाइए।
6: बूझो तो बूझ सको मेरा नाम, पहला कटे तो भगवान का नाम, दूजा कटे तो फल का नाम, तीसरा कटे तो स्थान का नाम।
0: बोलिए क्या हुआ उत्तर?

0: किसका?
1: राम।
0: सही उत्तर है
2: जी भैया।
0: बहुत सही है। मानवी आप क्या सुनाइएगा?
3: कविता।
0: कविता सुनाइए। कविता।
3: पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, समझ रही है क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपनी मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग, धरती कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सिर पर भार, नव कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माही आप क्या सुनाइएगा?
4: चुटकुला।
0: चुटकुला सुनाइए। चुटकुला।
4: एक रात एक चोर संता के घर में घुस गया और बोला, सोना किधर है? संता बोला, बेवकूफ पूरा घर खाली है, कहीं भी सो जा।
0: ये बताइए कि चोर जब घर में घुसता है तो पूछता है सोना किधर है, तो सोना खोजता है, ज्वेलरी खोजता है, चोरी करने के लिए जाता है, और संता बोलता है उसे पूरा घर खाली है, जहाँ भी जाओ सो जाओ। तो ये मूर्खता दिखाया ना संता ने?
4: जी भैया।
0: चोर चोरी करने के लिए गया था, यहाँ तक उस अंदाज से तो यही हुआ कि उसके घर की चोरी हो गई होगी। हो गई होगी ना?
1: जी भैया।
0: बहुत अच्छे। पायल आप क्या सुनाइएगा?
5: कविता।
0: सुनाइए कविता।
5: साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों पे भी पैदा कर सकते हैं राहें।
0: खुशी, आस्था,
6: निशा,
0: श्वधा और
6: मानसी,
0: सृष्टि,
6: मानसी।
0: आप ये छह बच्चियां हैं, आप बताइए क्या सुनाइएगा आप लोग?
1: पेयर।
0: सुनाइए।

0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रागिनी आप क्या सुनाइएगा?
1: चुटकुला।
0: चुटकुला सुनाइए। चुटकुला।
1: रब्बा दुख ना देना मेरे दोस्त को, चाहे मुझे सुखों का पहाड़ दे दे, नई साइकिल पर घूमे मेरा दोस्त, मुझे पुरानी BMW कार दे दे।
0: बहुत अच्छे। लेकिन जब ऊपर वाले से ये प्रार्थना की जाती है कि हर सुख मेरे दोस्त को दे दे, चाहे मुझे टूटी कार दे दे, मेरे दोस्त को नई साइकिल दे, लेकिन ये बताइए कि साइकिल से अधिक महत्व कार का है या साइकिल का?
1: कार का।
0: कार का है। तो नई साइकिल मित्र को जो है कह रहा है, और अपने टूटी ही कार, लेकिन कार मांग रहा है, तो कौन बड़ा हुआ? जो सुखी रखने के लिए मित्र को कह रहा है, खुश रखने के लिए मित्र को कह रहा है, और अपने लिए कार का डिमांड कर रहा है ऊपर वाले से, तो कौन हुआ बड़ा?
2: जो कार रखने के लिए कह रहा है।
0: नहीं नहीं, इसमें लोभ है, पर अपने लिए कार का डिमांड है ऊपर वाले से। साइकिल लाख नहीं।

0: हो जाए लेकिन कार से कम कीमत की होती होती है ना।
1: जी भैया।
0: बहुत सही। मुस्कान आप क्या सुनाइएगा?
1: पहेली।
0: पहेली। देखिए मुस्कान पहेली सुना रही है, आप लोग उत्तर बताएंगे। सुनाइए।
1: तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान।
0: बोलिए। तीन अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, क्या हुआ?
2: जहाज।
0: सही उत्तर है।
1: जी भैया
0: एकदम सही। आप क्या सुनाएगा?
1: चुटकुल्ला।
0: सुनाइए चुटकुल्ला।
1: सहेली ने सहेली से कहा, सबसे अच्छा व्यापार गोलगप्पे का ही है, फूल गया तो गोलगप्पा वरना पापड़ तैयार, फायदा अधिक नुकसान नहीं।
0: बताइए गोलगप्पा का व्यापार अच्छा है कि खराब है?
1: अच्छा है।
0: अच्छा है ना? अगर वो फूल गया तो अच्छा है, अगर चपटा हो गया तो अच्छा कुरकुरा बिस्किट की तरह हो जाता है, इसलिए गोलगप्पा पसंद आता है ना आप लोगों को? बहुत अच्छे आप लोग। मैं देख रहा हूँ कि 6-7 बच्चियाँ हैं। बताइए आपका क्या नाम है?
3: सोनाली।
0: सोनाली। आपका?
3: जरका।
0: आपका?
3: सोनी।
0: आपका?
3: खुशी।
0: आपका?
3: आयुषी।
0: आपका? क्या आप लोग ग्रुप कविता सुनाएंगे?
3: गीत।
0: गीत सुनाइए।

0: तो बच्चों आप लोगों को ये गीत कैसी लगी?
1: बहुत अच्छी।
2: बच्चों आप और हम सभी अपने खाने की सब्जियों में आलू का तो अधिक प्रयोग करते हैं एवं चाव से खाते भी हैं, मगर ये नहीं जानते

0: सकते कि इसका भी एक मुख्य दिवस मनाया जाता है। दिनांक 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया, तो इस पर कुछ चर्चा होनी चाहिए। आप जान लें कि आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के इंडीज क्षेत्र में हुई थी, जहां ये हजारों वर्ष से उगाया जाता रहा है। 16वीं शताब्दी में ये यूरोप पहुंचा, जिसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया। हमारे भारत में भी इसकी खेती बहुत होती है। जान लें कि आलू दुनिया की तीसरी सबसे अधिक खपत की जाने वाली फसल है, जो चावल और गेहूं के बाद आती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आलू में विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें लगभग 75-80% पानी होता है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। इससे रोजगार और आय के अवसर भी बढ़े हैं। और ये भी जान लें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। चीन, जिसे पहला आलू उत्पादक देश कहा जाता है, भारत में आलू उत्पादक राज्य में मुख्य हैं उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात एवं मध्य प्रदेश। ये ठंडी जलवायु एवं दोमट मिट्टी में फैलता है, जहां जल निकासी का स्रोत होता है। इसे अक्टूबर से दिसंबर रबी मौसम में ही उगाया जाता है। तो बच्चों, आप जान गए कि आलू का क्या महत्व है एवं इससे क्या क्या हैं लाभ। ये सभी सब्जी का है मौसा, आलू का महत्व है समझें ऐसा।
1: अब हम श्रोता बच्चों से ये कहेंगे कि आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम कैसा लगा, लिख भेजिए हमारे पास एक पत्र। हमें रहती है प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है कार्यक्रम अंकुर द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो यहीं से दीजिए अपने अंजुम भैया को अनुमति। जय हिंद बच्चों।
2: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: पेश है भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

आवाज़ थी मदन राय की। अगला गाना मुन्ना सिंह की आवाज़ में, रचना गणेश दत्त, किरण की है और धुन बनाई है यूसुफ खान ने।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी रस्तार कार्यक्रम के तहत। लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम गीत। आवाज है राहुल रौनक की, शिवधर जोगरी की रचना है, धुन बनाई है संजय रावत ने। एल्बम का नाम चले लो झमका के।

न्याय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

रसधार कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांच हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
1: मन की शांति और शक्ति

0: के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें।
2: भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
6: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
7: पर्सनल लोन ऑफर
8: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
7: फ्री ट्रिप टू दुबई
8: ये भी ब्लॉक? कितना ब्लॉक करूं यार?
9: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
8: तो क्या करूं?
9: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
8: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
9: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
10: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में, समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं, और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है। आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा। कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स

0: फेडरेशन कंपटीशन हुआ, इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया, देश भर से आए थे। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस, 100 मीटर की दौड़। महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा। जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर। मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए। अनिमेश जी नमस्कार, गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: नमस्कार सर। नमस्कार।
2: नमस्कार सर।
0: अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले।
1: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ, मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं, तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था, मैं बहुत खुश होता था। जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब की है, तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ, तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे, तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा, तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया आप पढ़ो, तो मैं कभी ठीक है आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
0: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
3: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी, उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा, तो मैं उनसे बातें करता था फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा, तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे, तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे भी मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है,

0: इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया

0: काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
1: जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी, कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
0: अनिमेश जी,
2: सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज, सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
0: अच्छा देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा, मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं, आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर रिबिया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा, क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कॉम्पिटिशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा।
0: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
1: हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे, तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहां पे करेंगे, यहां पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
0: देखिए आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है, ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
1: शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका,
0: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों,

हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है। आपने भी देखा होगा, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, संबारम और ओडिशा में बेलपना, वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है। और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, ये तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहां तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती।

यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजिब बालाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहां अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई है। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहां एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहां ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक

बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाएं। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहां एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब या कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती हैं। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं,
शुरुआत।

0: मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी। उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ। इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस किया कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ और FM गोल्ड

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम मशहूर पार्श्व गायक केके को याद कर रहे हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है सॉरी भाई। आवाजें केके, सुनिधि चौहान और अभिषेक नलवाल की। गीतकार हैं अमिताभ वर्मा और संगीत दिया है विवेक ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म सॉरी भाई का ये गीत, और आइए अब सुनते हैं के और तुलसी कुमार का गाया फिल्म नहले पे दहला। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं पंछी जालोनवी और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत हिमेश रेशमिया के संगीत निर्देशन में सुधाकर शर्मा का लिखा हुआ, गाने वाले कलाकार के और सुनीति चौहान, फिल्म का नाम हमराज।

कार्यक्रम का अगला गाना प्रीतम के संगीत निर्देशन में अनिल भारद्वाज का लिखा हुआ सुनिए। आवाजें हैं केके और राकेश पंडित की और ये फिल्म है स्टम्प्ड।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज केके की, गीतकार हैं समीर और संगीतकार हैं प्रीतम।

इसे आवाजें दी हैं केके और सुनिधि चौहान ने। फिल्म का नाम है रूड।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये आवाजें के अलीशा चिन्नॉय और जयेश की थी। फिल्म का नाम था दिल ने जिसे अपना कहा। इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई हिमेश रेशमिया ने।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: कार्यक्रम का अगला गीत प्रीतम के संगीत निर्देशन में सईद कादरी का लिखा हुआ, आवाज केके की, और ये फिल्म है मेट्रो।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं विपिन पटवा के संगीत निर्देशन में डॉक्टर सागर की रचना, स्वर के और अन्वेषा सरकार की। फिल्म का नाम है लव यू सोनियो।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने मशहूर पार्श्व गायक केके को याद किया।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, है ना? सच सच बताइएगा, इंतजार था ना इस कार्यक्रम का? और मेरा भी जी, इंतजार तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जीवन से चला जाता है तो वो पल उतना ही दुखदायी हो जाता है, है ना? तो बस आज हम उन्हीं कुछ पलों पर बात करने वाले हैं कि कई बार जीवन में किसी के चले जाने से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे विचारों से, हमारे दिल और दिमाग से कहीं जब कोई चला जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो एहसास कितना पीड़ादायी होता है। और इसी पर आज हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। हमने हमारी इबारत लिख भी दी है कि किसी के जीवन, घर, विचार से कहीं चले जाने का एहसास बहुत पीड़ादायी होता है साजना, और दीवाने रूठ कर न जाने कहाँ चले जाते हैं कि फिर उनके बगैर नींद भी नहीं आती। किसी के छोड़कर कहीं चले जाने पर दिल उनकी धुन में रोता जाता है और जोगी बन जाता है। तो ये है आज का सुरीला सफर। हमने आपको इबारत बता दी है, आपने पढ़ भी ली है, और जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनने भी ये सुन लिया होगा कि आज हमने क्या इबारत रखी है। और साथ ही हम उन शब्दों को भी बता देते हैं जो आज के चयनित गीतों में आएंगे। साजना कहीं दीवाने कहां छोड़ के रूठ कर जाता है नींद धुन दिल और जोगी। जी, ये ठीक उसी प्रकार का दुख कह सकते हैं कि आप ये कार्यक्रम अगर बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो हमें कितना दुख होगा, है ना? बस इसी प्रकार कोई जिंदगी से जब चला जाता है और जिंदगी को मझधार में रख जाता है तो कैसा लगता है। वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। ठीक बस उन्हीं रिश्तों से हम जब अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं और उसके चले जाने पर, उस किरदार के चले जाने पर हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं कि वो हमारी जिंदगी से चला गया है, तो बस इसी जाने पर आज इस सुरीले सफर को हम तय करने वाले हैं। ठीक है, आप हैं ना हमारे साथ? तो कार्यक्रम का यह है पहला गीत। राजेंद्र कृष्ण की ये रचना है, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अदालत। इस गाने से जुड़ा है शब्द साजना।

ये स्वर थी लता मंगेशकर और आशा भोसले की, फिल्म का नाम था अदालत। जी तो हमारे बहुत सारे श्रोता लगातार अपनी पसंद भेज रहे हैं कि ये गीत हो सकते हैं, और हो सकता है कि हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद आज मिल भी रही है, हमें लग रहा है ऐसा। तो आप तय करिएगा, सुनते रहिएगा और बताइएगा कि कौन सा गीत हमारी पसंद के गीतों से मिला है, यानी हमने जो अपनी पसंद के गीत आपके लिए रखे हैं क्या उससे आपकी पसंद भी मिल रही है। एक श्रोता लिखती है कि कुछ पीड़ाएं अस्थाई होती हैं, अदृश्य होती हैं और जाना सुखद भी है और दुखद भी। कोई जीवन से अचानक चला जाए, इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है, और जब मन को पता है कि ये जाने वाला लौटकर आएगा तो मन को तसल्ली बनी रहती है। कुछ जाने वाले जीवन में रच बस जाते हैं, वे हमारे भीतर रहने लगते हैं। जाना दूरी का विलोम नहीं है, किसी का स्मृतियों से चले जाना हमें वर्तमान से दूर कर देता है। जाना सुखद हो या दुखद, दोनों ही पहलू में एक अव्यक्त बेचैनी छिपी है, मन में एक मानसिक द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

आपने जो शब्द हमें दिए हैं इन पर कई अच्छे गाने हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, आपको वही गाने तो ढूंढने हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी आत्मी के जीवन, घर और विचारों से ओझल हो जाने की पीड़ा रूह को झकझोर देने वाली होती है। उसके जाने से घर के कोने सूने और रातें बेगाना हो जाती हैं, जहां पलकों पर नींद नहीं सिर्फ तन्हाई का पहरा होता है। जब कोई अपना रूठकर दूरियों की चादर ओढ़ लेता है तो दिल का धड़कना भी एक मौन प्रार्थना में बदल जाता है। क्या बात है, ये विरही है जो सांसारिक मोह माया छोड़कर दिल को किसी यादों में जोगी बना देता है। आंखों का सूनापन और ख्यालों में गूंजती उनकी ही धुन सुकून के हर पल को चुरा लेती है। नींद भी गवाह बन जाती है कि कोई अपना कितनी दूर जा चुका है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस कार्यक्रम का शीर्षक सुरीला सफर सार्थक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज विषय वस्तु और चुनिंदा शब्द स्पष्ट कर दिए गए हैं। एक कहावत है, जो आया है वो जाएगा भी। वास्तविकता भी यही है कि किसी का जाना हमें उदास कर देता है, क्योंकि जाना बिछोह को निरूपित करता है और आना मिलन को निरूपित करता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज इस सुरीले सफर में गीतों के माध्यम से संगीत की दुनिया की सैर करेंगे। सभी को नमस्ते। बहुत खूब, देखिए बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं, है ना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत संबंधों के बिछो में व्यथित हृदय की पीड़ा का बखान है। चाहे ये बिछो प्रेम युगल का हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो या राजनीतिक हो, हृदय से समर्पित व्यक्ति विशेष का अलगाव वेदनापूर्ण होती है। एकमात्र वक्त ही इस शून्यता की पूर्ति कर देता है। सूत्र प्रदान कर आपने आज के सफर को मनोरंजक और रोमांचक बना दिया है। इंतजार रहेगा। शुक्रिया, आप सभी इस कार्यक्रम को इतना पसंद कर रहे हैं और आपको थोड़ी सी हिंट हमने दे दी है। तो आपने बहुत सारे गाने हमें लिखकर भेजे हैं और बहुत ही शानदार गीत आपने चुने हैं आप सभी ने। लेकिन अब आपकी पसंद मेरी पसंद से मिलती है कि नहीं, ये आपको गाने सुनने के बाद ही पता लगेगा। आइए सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, कुछ बातें आपसे पूछनी भी तो है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी जिंदगी से भी कोई आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका चाहने वाला यूं चला गया कभी? बताइएगा दिल से, सच्चाई के साथ। दूसरा सवाल, सवाल नहीं, एक बातचीत कह सकते हैं, आपके मन के भाव, आपकी जिंदगी में क्या घटित हुआ, शायद ये जानना कि क्या आप किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, रूठ कर आए हैं, निकल कर आए हैं। ऐसा कभी आपको लगा कि मैंने वो रिश्ता क्यों तोड़ा? इस पर बताइएगा हमें कि आपसे ऐसी गलती हुई या आपने जो किया सही किया क्या? कई बार क्या होता है, हम विचारों का जब हमें मेल नहीं मिलता, हम विचारों से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो हम उस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है। और बाद में हमें लगता है कि अरे थोड़ा सा हम रुक जाते, थोड़ा सा और संभल जाते, थोड़ा सा और समझ लेते किसी को, तो शायद ये किसी की जिंदगी से यूं चले आना नहीं हो पाता या नहीं होता। तो कभी आपको ऐसा लगा कि आपका कोई निर्णय गलत हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त।

जी कितना खूबसूरत गीत, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। हम भी अपने श्रोताओं से यही कहेंगे कहीं मत जाइएगा इस कार्यक्रम के सिवा, सुनते रहिएगा, बने रहिएगा सुरीले सफर में हमारे साथ। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर पूरा करना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इबारत की शुरुआत दूर चले जाने से होने वाली पीड़ा है। हमें अपनी जिंदगी में कितने अनजान लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ भूल जाते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे कहते हुए भी कुछ हम भूल जाते हैं, बचपन के दोस्त जवानी में बिछड़ जाते हैं, कभी कभी

नौकरी खत्म होने के बाद मिलते हैं, बिछड़े से भी बारी बारी ये सिलसिला चालू रखते हुए हमें जिंदगी का सफर और आज का सुरीला सफर पूरा करना है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपने जज्बात पेश किए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिनकी आवाज में जादू है, जिनके बोलों में मिठास है, जो गंगा नदी की तरह बहती हुई अपने गीतों की फुहार से हम किनारे के पत्थर जैसे श्रोताओं को भिगो कर चली आ रही है, ऐसी भगिनी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, शुक्रिया, मेहरबानी। आप लिखते हैं कि आशीर्वाद बना रहे, सदैव हमारी सागर किनारे बसी बहनों को मिलता रहे, यही शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आप अपने जज्बात, अपने आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं हमें देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर को आपने कुछ दिलचस्प बना दिया है, हमेशा की तरह इस बदलाव से लोगों में उत्कंठा जरूर जागृत होगी, हमारे श्रोता बंधु रविवार का आनंद उठा लेंगे, कार्यक्रम में आपने जान ला दी है, वरना कार्यक्रम उबाऊ, नीरस और अप्रासंगिक हो चला था। अपने रोजमर्रा के कार्यों से जल्दी जल्दी निबट कर आराम से कुछ सोचकर लिखने बैठूंगा, नमस्कार। एक श्रोता लिखते हैं कि जाने, यानी एक छोटा सा शब्द है ये, लेकिन अपने भीतर भावनाओं का एक विशाल संसार समेटे हुए है। जाने शब्दों में कई रंगों में ढलता है, कहीं विदाई की कसर, कहीं प्रेम की नमी, तो कहीं यादों की गहराई। जब कोई अपना दूर चला जाता है तब जाने शब्द में बिछड़ने का दर्द झलकता है। जाने शब्द केवल भाषा का हिस्सा नहीं बल्कि इंसान की भावनाओं का एक जीवंत आईना है, जिसमें प्रेम, विरह, उम्मीद और यादें एक साथ झलकती हैं। हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये होती है कि हमारे श्रोता कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात कहते हैं और यूं कहें कि अपनी इबारत को किस तरह से पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इतनी खूबसूरती से अपनी बात कहने का। हाँ, तो चलते हैं इस शब्द की ओर, दीवाने। कौन सा गीत है पता चला ना आपको? आपकी पसंद से मेल खा रहा है ये गीत, जरा टटोलिए।

फिल्म का नाम है CID, गायिका हैं गीता दत्त, जानिसार अख्तर की रचना, OP नैयर की धुन।

जी, तो हम भी इस सुरीले सफर के इस सफर में आपसे जानना चाहते थे, क्या आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला क्या कभी यूं चला गया कि आप ठगे रह गए, या आप किसी की जिंदगी से, किसी रिश्ते से रूठकर चले आए, खुद को तन्हा कर लिया आपने और बाद में आपको लगा कि नहीं, मुझे यूं नहीं करना चाहिए था। सोचिए जरा, खंगालिए अपने आप को और दीजिए ना जवाब। आपके जवाबों का हमें इंतजार है बेसब्री से। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है, मैं तो बहुत उत्साहित हूं और कार्यक्रम को सुनूंगा। बिल्कुल रहिएगा हमारे साथ अंत तक, यही तो इल्तिजा है आज कि जाना नहीं है बीच में छोड़ के। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का जाना, चाहे वो जिंदगी से हो, घर से हो या फिर विचारों से हो, ये वो अवस्था होती है जब मन का खालीपन भी बोलने लगता है। जिसे खोया ही न हो उसकी कमी कैसे महसूस हो सकती है। जुदाई बताती है कि कोई मन की कितनी गहराइयों तक बसा था। कभी कभी पास रहने वाले लोगों के बीच भी दूरियां होती हैं, जो दूर होकर भी कोई बहुत नजदीक होता है। किसी की जुदाई हमें अपनी ताकत से रूबरू करवाती है और सिखाती है कि जो हमें प्रेम करते हैं या हम जिनसे प्रेम करते हैं उनकी कद्र समय रहते कर लेनी चाहिए। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं हम और आज के गाने जरूर सुनेंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज अपने शब्दों की माला को गद्यांश में इस तरह पिरोया है कि अपने आप एक भाव उभर कर आया है और वो वियोग और विरह का पर्याय बना है। जाना शब्द कई भाव लेकर आता है, ये न केवल बिछड़ना दर्शाता है मगर मन की उस अवस्था का चित्रण करता है जहां एक ओर खालीपन है तो दूसरी तरफ वियोग और मलाल की मनोदशा को इंगित करना। आज गाने भी विरह की इस स्थिति को गहरा बना देंगे और शायद थोड़े अवसाद की स्थिति में भी रहेंगे गाने सुनकर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अवसाद में चले जाएंगे, लेकिन हाँ, उन यादों को हम जरूर कहीं ना कहीं फिर से याद करेंगे कि कहीं हमने किसी को खोया था या कोई हमारी जिंदगी से किसी भी कारण से चला गया था या इस दुनिया से चला गया था। आज उस खालीपन को हम इस सुरीले सफर में महसूस करेंगे, बस और कुछ नहीं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हसरत जयपुरी की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम आरजू। जी, ये गीत सुनने के बाद आप समझ जाएंगे रूठ कर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं की पसंद मिलती है इस गीत के जरिए, है ना।

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के इस कार्यक्रम से बिछड़ जाएंगे क्योंकि किसी पूजा में जाना है तो बिछड़ने का दुख हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे दुखी मत होइए, कोई बात नहीं, आप पहले अपने कार्यक्रम को निपटाइए, उसके बाद फिर कभी सुन लीजिएगा। रोज ही ये कार्यक्रम आपके लिए हम तो पेश करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चलिए विविध भारती का ये सुरीला सफर, जहां आज वियोग की पीड़ा से महबूब और महबूबा दोनों गुजर रहे हैं, ऐसे में तो विरह के वे सुरीले गीत जो विविध भारती की ढलती जाए रात में कभी कभी सुनने को मिलते हैं, आज सुनेंगे और दोपहर में ठंडक पहुंचाएंगे। जी आप देखिए कैसा लग रहा है आपको, तपती दोपहर में गीत आपको सुकून दे रहे हैं क्या, बताइएगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जाना केवल कदमों का सफर नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और रिश्तों का बिछड़ना भी है जो मन को गहराई तक छू जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कम शब्दों में आपने बहुत गहरी बात कह दी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जाने वालों की सदा दिल से गूंज जाती है, कुछ यादें उम्र भर की पूंजी बन जाती है, मिलना भी एक किस्सा है, बिछड़ना भी दस्तूर है, जाने की एक आह से कई कहानियां बन जाती हैं। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई हमारी जिंदगी की चौखट लांघ कर हमेशा के लिए दूर चला जाता है तो पीछे सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा छोड़ जाता है, दिल की बस्ती ऐसे उजड़ती है कि हर कोना उनकी यादों की चुभन से रो पड़ता है, रातें जागकर कटती हैं, आंखें बंद करती हैं, उनका चेहरा ख्वाबों में आकर नींदें छीन लेता है। इंसान दुनिया की भीड़ में रहकर भी अंदर से बिल्कुल अकेला और फकीर हो जाता है, जिसका मन बस हर पल उसी एक शख्स की धुन गाता रहता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर ऐसा प्रतीत हो रहा है इसमें वियोग की पीड़ा चरम है। एक श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी, आपके द्वारा किए गए प्रयोग शानदार हैं, आप इस कार्यक्रम को रोचक बनाए रखे हुए हैं, कुछ गीत आपने लिखा है देखिएगा। हाँ, मुझे लग रहा है आपके कुछ गीत जो हैं हमारे गीतों से मिल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, जिन जिन श्रोताओं के गीत हमारी पसंद से मिल रहे हैं उन्हें हम दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, बधाई देते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हम विविध भारती के

कार्यक्रम से अच्छा बिछड़ जाएंगे मत बिछड़िएगा, आप अन्य किसी कार्यक्रम में शिरकत कीजिएगा, है ना। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी कोई जिंदगी से चला जाता है तो तकलीफ सिर्फ उसके जाने की नहीं होती, तकलीफ उन आदतों की होती है जो उसके साथ जुड़ गई थी, उन बातों की होती है जो अब किसी से कही नहीं जा सकती, उन सपनों की होती है जो हमने उनके साथ मिलकर देखे थे। ऐसा लगता है कि जैसे दिल का कोई हिस्सा कहीं रुक गया हो उसके साथ। दुनिया वैसी ही चलती रहती है, लोग वैसे ही हंसते बोलते हैं, लेकिन अंदर एक खामोशी घर कर जाती है। हर छोटी चीज उनकी याद में उनकी याद दिलाती है, कोई गीत, कोई जगह, कोई पुरानी बात। और फिर अचानक महसूस होता है कि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारी रूह में बसे रहते हैं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम उन्हें भूलना नहीं चाहते, लेकिन हर दिन उनके बिना जीना सीखना पड़ता है। ये दर्द आंसुओं से ज्यादा उन मुस्कुराहटों में छिपा होता है जहां हम ठीक होने का दिखावा करते हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखते हैं कि आज संडे की दिन है, छुट्टी का दिन है, अभी इस समय हमें जाना है, पर उठकर नहीं हम जा रहे, माता रानी के मंदिर से दर्शन करने और गुरुद्वारे में माथा टेकने जा रहे हैं। साजना के साथ सजनी भी होगी, परंतु आज ठीक दोपहर 1 बजे आप हमारे साथ सुरीला सफर में होंगी और मैं स्वयं भी रेडियो के पास बैठकर प्रोग्राम का आनंद लूंगा आपकी मधुर प्रस्तुति के साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले एक बार फिर से हमारे सवालों को दोहरा देते हैं कि आपकी जिंदगी से आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई चाहने वाला अचानक चला गया हो किसी भी कारण से, ऐसा कभी आपको लगा कि आप ठगे से रह गए? लिखिएगा ये बात। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, कुछ कुछ श्रोताओं ने लिखना शुरू कर दिया है और अब हम उन्हीं श्रोताओं को शामिल भी करने वाले हैं अगली बार। और साथ में आप किसी से रूठकर चले आए हैं, आप किसी की जिंदगी से चले आए हैं, आपने किसी रिश्ते को धत्ता बता दिया है, या आप किन्हीं के विचारों से सहमत न होते हुए आपने अपनी दुनिया अलग बसा ली है, ऐसी बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में हमारे साथ होती रहती हैं। बताइएगा आपके साथ क्या कभी ऐसा कुछ हुआ है। और अब आपके लिए बहुत पुरानी फिल्म किंग कॉन्ग का गीत मैं लेकर आई हूँ। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

ग्यावासी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था किंग कॉन्ग। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे जीवन में सबसे अनमोल है हमारा समय, जो एक बार चला गया तो फिर वो लौटकर कभी नहीं आता। वो समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे जीवन में उस समय की सिर्फ यादें रह जाती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि किसी के जाने का दर्द दुनिया के सबसे गहरे दुखों में से एक है। चाहे वो रिश्ता टूटने की जुदाई हो या फिर किसी अपने का हमेशा के लिए चले जाना, ये अकेलापन और खालीपन इंसान को अंतर तक झकझोर देता है। व्यक्ति को ये दर्द ताउम्र सालता रहता है। बहुत सी बातें अधूरी रह गई हमारे दरमियान, जो अचानक यूं गया कि अलविदा कहने का मौका भी ना मिला। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि किसी के चले जाने से सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, उसके साथ घर की हंसी चली जाती है, दीवारों की बातें चली जाती हैं, आंगन की धूप और चौखट की छांव चली जाती है। वो जाता है तो लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो, घड़ी चलती रहती है मगर जिंदगी की सुइयां अटक जाती हैं। रूठ कर जाने वाले शायद नहीं जानते कि उनके पीछे कितनी रातें अनाथ हो गई, तकिया आंसुओं से भीगता रहता है और नींद दरवाजे तक जाकर बिना दस्तक दिए लौट आती है। अब हर आहट पर दिल चौंकता है, हर कदम की आवाज में उनका नाम सुनाई देता है। हवा चलती है तो लगता है शायद उसका आंचल छूकर गया हो मगर जब मुड़कर देखते हैं तो सिर्फ खालीपन खड़ा मिलता है। उसके बिना घर घर नहीं लगता, सिर्फ ईंटों का एक ढेर लगता है। दिए जलते हैं मगर उजाला नहीं होता, लोग मिलते हैं मगर कोई अपना नहीं होता। दिल उसकी धुन में ऐसे रोता है कि धीरे धीरे जोगी बन जाता है। न कोई इच्छा बचती है न कोई ख्वाब, बस एक नाम रह जाता है जो हर सांस के साथ टूटता रहता है। वो कभी कभी लगता है कि वो लौटकर आएगा अचानक और कहेगा मैं यहीं था तुम्हारे पास, मगर फिर सच सामने आता है और उम्मीदों का आखिरी दीपक भी आंधी में कांपने लगता है। साजना, तुम्हारे जाने के बाद मैंने जाना कि दर्द की भी एक आवाज होती है। वो आवाज रात भर मेरे सीने में रोती है और सुबह तक मेरी रूह को भिगो देती है। क्या बात है, अब तो बस यही दुआ है कि जहां भी हो खुश रहो, क्योंकि मोहब्बत का सबसे बड़ा दुख यही है कि जिसे भूल नहीं सकते उसकी खुशी के लिए अपने आंसू छुपाने पड़ते हैं। और सच तो यह है कि कुछ लोग घर छोड़कर नहीं जाते, वे दिल में ऐसा बसेरा कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद पूरी उम्र उनके लौटने का इंतजार जिंदगी बन जाता है। क्या कहूं मैं आपके लिए, क्या कहूं मैं आपके लिए, इतना सुंदर लिखा है कि मेरी आंखें नम हो गई हैं और गला रुंध गया है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में रिश्ते कमजोर होते चले जा रहे हैं और ऐसा होता है कि हम अकेले हो रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है हमारे सवाल के जवाब में कि हाँ, मेरा एक ऐसा दोस्त दुनिया से ही चला गया जो बचपन से ही मेरा सच्चा मित्र था। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हम दोनों के विचार मिलते थे और वो भी मेरी तरह रेडियो और विविध भारती प्रेमी था। मुझे उसकी कमी बहुत खलती है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपनी बात लिखी है। वाकई चाहे दोस्त दुनिया से जाए या जिंदगी से जाए, जब उसकी याद आती है तो वाकई लगता है कि कितना अकेलापन है। एक श्रोता लिखते हैं कि राग किरवानी में बेहतरीन गाने से शुरुआत आपने की फिल्म अदालत का गीत जा जा रे जा साजना बहुत सुंदर था। अरे वाह, आपने राग किरवानी का जिक्र भी कर दिया। एक श्रोता लिखते हैं कि निश्चिंत रहिए मंदाकिनी जी, आज मैं बीच में कार्यक्रम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्या खूब, क्या खूब, बहुत सुंदर, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। यकीन मानिए, ये छोटा सा कि मैं हूं ना आपके साथ, ये वाक्य आपके दिल और दिमाग में कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है ये आपने अपनी जिंदगी में जरूर महसूस किया होगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपसे ही एक सवाल है मंदाकिनी जी, कि अगर आपने किसी के लिए बहुत किया हो और उसने आपकी ही कब्र खोद दी हो तो इस तरह के व्यक्ति को का बिछड़ना ही बेहतर होता है कि नहीं, शायद वहां दूरियां ही बेहतर होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कई बार ऐसा होता है कि हम जिनके लिए अपने आप को खपा देते हैं और पता चलता है कि सामने वाले ने तो वाकई हमारी बाटी लगा दी है, तो ऐसी स्थिति में दुनिया बनाना श्रेयस्कर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूर जाने के कई कारण भी होते हैं, इस गीत में यही बताया गया है। फिल्म दो बदन का गीत आशा भोसले की आवाज, शकील बदायूनी के बोल और

हमारे श्रोता ने लिखा है कि मंदाकिनी जी बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन अपनी माँ का जाना भगवान के घर ना कभी भूल पाया हूँ ना भूल पाऊंगा जी। ये तो एक ऐसा दर्द है जो कभी नहीं भुलाया जा सकता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी का आना तो बेचैन किए ही रहता है क्योंकि उसका इंतजार रहता है, लेकिन किसी का जाना और भी व्याकुल और भावुक कर देता है। हमने फौजियों के ड्यूटी पर जाते समय दृश्य देखे हैं जहां मां लिपट कर रोती है और पिता चारपाई पर बैठा सिर पकड़े कुछ न कहने की मुद्रा में है। संस्कारों में बंदी पत्नी दरवाजे के किवाड़ का ओट लेकर दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए सुबक रही है। दूर खड़ा एक बच्चा किंग कर्तव्य विमूढ़ सा पूरे परिवार को देख रहा है और गांव के लोग जाने वाले रास्ते पे खड़े विदाई देने को तैयार खड़े हैं। एक ऐसी विदाई जहां सबकी आंखें सजल है, ऐसी विदाई तो बेटी के ससुराल जाते समय भी नहीं देखी जाती है। बहुत सही लिखा आपने, बहुत ही गहरा वर्णन किया है, वाकई आंखें भर आई हैं। और इस तरह का जाना, जैसा कि अभी हमने गाना सुना मत जइयो नौकरिया, तो कई बार नौकरी के लिए जाना, कई बार मजबूरी में जाना, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात पैदा करते हैं जब हम इस जाने को नहीं रोक पाते हैं।

हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। वही एक लिखते हैं श्रोता, आपने पूछा किसी रिश्ते को तोड़ने का दुख हमें जरा भी नहीं है, अफसोस अपनी बुद्धि पर क्यों इतने दिन तक ढोया उसे, ऐसा महसूस करते हैं ये। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हर जज्बात को लिखा भी तो नहीं जा सकता, उंगलियां साथ नहीं देती और आंखें बेवफाई करने लगती हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत से लोगों को जाते हुए देखा, हाँ लेकिन अपनी माँ को इस तरह से जाता हुआ देखना बहुत दुखदायी था। वाकई आपने अपने दिल की बात लिखकर हमारा मन भी बहुत भारी कर दिया, और ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे पल आते हैं जहां किसी का जाना हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था हम दोनों। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे जयदेव। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे फेवरेट सिंगर केके का यूं अचानक चले जाना मेरे लिए बेहद पीड़ादायक रहा, क्योंकि इनके गानों ने ही मुझे मेरे माँ बाबा और बहन के गुजरने के बाद टूट के बिखरने से संभाल रखा था। बिल्कुल सही कहा, हम किसी कलाकार से जब बहुत जुड़ जाते हैं तो उसके प्रति जो प्रेम है वो बस दीवानगी की हद तक होता है। मुझे भी याद है जब केके अचानक चले गए थे अपने कॉन्सर्ट में, तो मैं ड्यूटी पर ही थी और ये समाचार सुनने के बाद लगा जैसे क्या हो गया और कुछ समझ भी नहीं आया। मन को एक अलग ही मतलब अलग किस्म की स्थिति पैदा हो गई थी। आपने बिल्कुल सही लिखा कि उनका जाना हम संगीत प्रेमियों के लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल भरा पल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज चित्रलोक और यादों की महफिल को केके स्पेशल बना के मैं सचमुच इमोशनल हो गया हूं और सारे गानों को अकेले में जोर जोर से मैंने गाया है, इसके लिए मैं थैंक यू कहता हूं विविध भारती को। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपने जो पूछा है कोई बिछड़ जाए तो मेरे तो जिंदगी ही मुझसे बिछड़ गई। एक श्रोता लिखती है कि मेरे पति देव जब से वो छोड़ गए 11 साल हो गए हैं, लेकिन एक भी पल वो क्षण मैं नहीं भूल पाती, ठगी सी रह गई जिंदगी में। आज भी कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। सभी कहते हैं जो अच्छे लोग होते हैं वो भगवान के पास जल्दी चले जाते हैं, तो कभी कभी अपने आप लगता है कि काश मैं भी उसी दुनिया में चली जाती। आपने बिल्कुल सही लिखा, ये दुख बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा, और इसे आपको अपने मन को कठोर रहकर समझाना ही होगा। हम आपके साथ हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया मंदाकिनी जी, बहुत खास कोई छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, मगर फिर किसी खास के लिए हम खड़े हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे जीवन साथी अगस्त 2024 में हमें छोड़कर चले गए थे, इस संसार से चली गई थी, और मेरे जीवन में वो इतनी घुली मिली थी कि उनका जाना आज अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं होती तो शायद मैं भी उनके साथ चला गया होता। बहुत ही गहरे जज्बात हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। और अब सुरीला सफर से मंदाकिनी जोशी चाहती है इजाजत। समय हमें और वक्त नहीं दे रहा है कि इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस कार्यक्रम को और आगे तक ले जाएं, तो मंदाकिनी जोशी को दे इजाजत। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम के जरिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से भीषण गर्मी को लेकर इन दिनों अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करना उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हैं और इनमें पीढ़ियों का अनुभव समाहित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हाड़ में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता की चर्चा की। इसमें लगभग 800 एथलीटों ने भाग लिया था। श्री मोदी ने गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।

0: से समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री स्वामीनाथन ने कहा कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। उन्होंने कहा कि नौसेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसे श्रेष्ठतम स्तर की युद्ध क्षमता से लैस किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सिवान, सारण, शेखपुरा, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आंधी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देसी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विविध सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सकीर से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के आवाम से अपने ख्यालात शेयर किए। वज़ीर आज़म ने मुल्क के आवाम से शदीद गर्मी के पेश नज़र इन दिनों ज़्यादा एहतियात बरतने और हुकूमत के रहनुमा हिदायत पर अमल करने की अपील की। उन्होंने लोगों को ज़रूरी मकदार में पानी पीने और धूप से बचने के तदाबीर करके ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमौर, सांबरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का इस्तेमाल मुफीद है। उन्होंने कहा कि ये मशरूबात एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को जाहिर करते हैं और इनमें नस्लों का तजुर्बा शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क की बेशकीमती विरासत के तहफ़ुज़ के लिए कोशां है। उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं सदी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से मुंसलिक नायाब तांबे की 3 प्लेटें भी मिली हैं। वज़ीर आज़म ने झारखंड की राजधानी रांची में मुनक़िद नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन टूर्नामेंट का तज़किरा किया। इसमें तकरीबन 800 एथलीटों ने हिस्सा लिया था। जनाब मोदी ने गुरुवेंद्र वीर सिंह जनाब मोदी ने गुरु

जनाब मोदी ने गुरुवेंद्र वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को चार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारक।

बात दी। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरेंद्र वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा कि इल्म फलकियात ने मुल्क की हर नस्ल में शौक पैदा की है। उन्होंने कहा कि इल्म फलकियात मुल्क में तेज़ी से मकबूल हो रहा है। जनाब मोदी ने नौजवानों से इल्म फलकियात क्लब में शामिल होने और छुट्टियों के दौरान तारा मंडल देखने की अपील की। वज़ीर आज़म ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन तहफ़ नदी के हयातियाती तनवो और बेशकीमती कुदरती विरासत का तहफ़ भी होता है। वज़ीर आज़म ने चेन्नई के पहले हिंदू स्कूल का तस्करा किया जिसने गुज़श्ता साल अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल नेटवर्क ने मुल्क के तालीमी और सकाफती वक़ार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वह अपने आस पास समाज की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे लोगों को पहचानने और ख़ुद भी अच्छे कामों से जुड़ें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम

0: वज़ीर आज़म ने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें अहम किरदार अदा किया। जनाब मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन तहफ़ नदी के हयातियाती तनव और बेशकीमती कुदरती विरासत का तहफ़ भी होता है। वज़ीर आज़म ने चेन्नई के पहले हिंदू स्कूल का तस्करा किया जिसने गुज़श्ता साल अपने 50 साल मुकम्मल किए थे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल नेटवर्क ने मुल्क के तालीमी और सकाफती वक़ार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा किया है। जनाब मोदी ने मुल्क के आवाम से अपील की है कि वह अपने आस पास समाज की बेहतरी के लिए मुसलसल काम कर रहे लोगों को पहचानने और ख़ुद भी अच्छे कामों से जुड़ें। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुना और प्रोग्राम में ख़ास तौर से बिहार का जिक्र किए जाने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। जनाब चौधरी ने कहा कि प्रोग्राम में शदीद गर्मी से बचाव के लिए बिहार के रवायती मशरूब सत्तू और मशहूर जरदालू आम का तज़किरा रियासत की ख़ास शनाख्त को कौमी सतह पर जाहिर करना है। जनाब चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म के ज़रिए बिहार की शानदार सकाफती विरासत मुकामी पैदावार और आम जिंदगी से जुड़े मौजूदात का तज़किरा रियासत के आवाम के लिए फ़ख्र एजाज़ का बायस है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 27वें बहरिया सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ली है। जिम्मेदारी संभालने के बाद एडमिरल स्वामीनाथन ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में बहरिया की जदीदकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसे आला मियार की जंगी सलाहियत से लैस किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, मशरकी चंपारण और मगरबी चंपारण समेत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी मुहिम चलाकर अलग अलग इलाकों से 900 लीटर शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपये की ठगी करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एनडीए परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट ALP के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 32 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर। नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का किया उल्लेख। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यन ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ परमाणु समझौता करीब, चेतावनी दी कि यदि वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प बना रहेगा। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज सिंगापुर ओपन के डबल्स फाइनल में इंडोनेशियाई जोड़ी से खेलेंगे और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी सातवीं शताब्दी के पांडुवंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती हैं।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी

0: जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
0: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर सांभरम, कोकम शरबत और सोल कड़ी का सेवन करने की अपील की है।
0: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
1: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
0: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
0: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: प्रधानमंत्री ने रांची में आयोजित राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना और कुलदीप कुमार को 4 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने पर बधाई दी। श्री मोदी ने 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने वाले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर से बात भी की।
2: नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेश कुजूर है। 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर, एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया। फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर, एंड मैं पार्टिसिपेट किया। मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली।
0: और गुरिंदर वीर जी का क्या है?
3: नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ। पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ।
1: श्री मोदी ने कहा कि खगोल विज्ञान ने देश की हर पीढ़ी में जिज्ञासा जगाई है। उन्होंने कहा कि खगोल विज्ञान देश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। श्री मोदी ने युवाओं से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होने और अपनी छुट्टियों के दौरान तारामंडल देखने की अपील की।
0: राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया।
0: ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस

0: बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नागरकोइल में 15 स्कूल चलाने वाली शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए योगदान देने का संकल्प लिया है। गिरिजा अम्मा ने बहादुर सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपये प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नवनियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नवाचार के समावेश से सैन्य क्षमताओं के विकास में और तेजी आएगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्टअप और अनुसंधान तंत्र के बीच तालमेल से आधुनिकीकरण को बल मिलेगा।
2: नेवी, एयरफोर्स,
3: नौसेना, वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, रणनीतिक संस्थान और सभी हितधारक भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण के तहत एकजुट हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जय एकजुटता, आत्मनिर्भरता और नवाचार।
2: आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन।
1: नव नियुक्त प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को आज नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि बातचीत विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प खुला होगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि समझौता होते ही होर्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खुल जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 मई को देश में 15,000 छतों पर सौर पैनल लगाए गए। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किसी एक दिन में सौर पैनल स्थापित करने का रिकॉर्ड है। सबसे अधिक पैनल महाराष्ट्र में लगाए गए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने कहा है कि भारत बांग्लादेश की खुली सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाले चिकन नेक गलियारे को मजबूत बनाने पर बल दिया। पिछली तृणमूल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार को बाड़ लगाने के लिए जमीन हस्तांतरित नहीं की थी। दक्षिण दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास कल शाम एक 4 मंजिला व्यावसायिक इमारत के गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई, 5 घायलों की हालत स्थिर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अनधिकृत निर्माण के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के डबल्स फाइनल में आज सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला। इंडोनेशिया

0: के मोहम्मद शोएब उल फिक्री और फजल अल्फयान से होगा। सात्विक साईराज और चिराग ने मई 2024 में थाईलैंड ओपन के बाद से कोई भी खिताब नहीं जीता है। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4-5 दिन में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर बिजली के साथ साथ गरज चमक की भी आशंका है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी कल तक कुछ स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नीदरलैंड्स की हालिया यात्रा के दौरान प्राचीन चोल काल की ताम्रपट्टिकाओं की स्वदेश वापसी का उल्लेख किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी के मौसम में सुरक्षित रहने का आग्रह किया। उन्होंने पारंपरिक भारतीय शीतल पेय की प्रशंसा की और स्वदेशी आम की किस्मों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए किसानों की सराहना की। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य ने कहा, भारतीय सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज शाम गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में, प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: मस्त पवन है चंचल धारा, मन की मैया डोल जाए। मस्त पवन है चंचल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार।

0: मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल बिस्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

अनिल बिस्वास की संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: भारती से बोल रही हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मनचाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आप सभी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को

0: सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुक न चली जाए।
1: अच्छा मैं कैसी हूँ?

शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशिला देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: क्या कहती हो?
1: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया।
0: नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह के दुखद यादें तंग करेगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
1: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं बनाए।
0: ओ डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए। प्यारा प्यारा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना। हा?
1: प्यारा प्यारा सा दुल्हारा सा नन्ना मुन्ना।
2: देसी।
3: छोड़ दीजिए ना।
2: अरे अरे सुनो तो।
3: नहीं सुनती।
2: ओफो, अरे बात तो सुनो
3: बेनी। देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
2: ओ डेजी, डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो।
2: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
2: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो।
1: ये साड़ी
0: डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: पहले उसे दवा दी जा रही है।
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूं मैं? आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता की दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा। इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूं। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा, उसे प्यार करना होगा।
2: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं मां हूं, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।

0: अच्छा छोड़ो, अब डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
1: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
0: रेडीमेड हंसी? अरे भाई, हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी।
2: जी
1: भाई, बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
2: चलिए, कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी।
1: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ, ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
0: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
1: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
2: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
1: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है?
2: डॉक्टर,
1: सो रहा है?
2: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
0: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
1: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस, बुखार अभी भी है?
0: Well, but that doesn't matter, doctor. Slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
1: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
0: ओके okay.
2: अच्छा
0: बाय डॉक्टर, बाय।
2: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
0: जब तक जरूरी होगा।
2: मुझसे अब और नहीं सहा जाता, कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
0: अपने लिए।
2: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
0: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
2: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
0: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
2: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
0: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
2: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
0: डेजी, तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
2: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
0: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
2: बंद भी करो ये सब, बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
0: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
2: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
0: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी की कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
2: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
0: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
2: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
0: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
2: तुम्हें क्या हो गया है?
0: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो, लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
2: मिल गया संतोष। बेनी, मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
1: डेजी, एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
2: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर, आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
1: कैसी शंका?
2: मेरा बच्चा कुरूप क्यों है? क्या बेनी को सदा याद करते रहने से

0: हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं,
0: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो, या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो, क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूं। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में बात डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ, डॉक्टर रामदास।
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था, उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को इस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: व्हाट डू यू मीन डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तो?

0: नहीं, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
0: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई से डॉक्टर।
1: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट ए ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
0: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
1: नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
0: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
1: नो, इट वाज नॉट ए मेयर डेथ, इट वाज ए क्लियर मर्डर।
0: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर।
1: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं। डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
0: नो नो,
1: क्यों डॉक्टर? सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उर्ण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए, इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
0: डॉक्टर, डॉक्टर
1: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
0: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
1: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
0: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
1: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू।
1: नहीं कहूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर।
1: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
0: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
0: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
0: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
0: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
0: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
0: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
0: हाँ,
2: हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
0: हाँ, वो डेजी, मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ।
0: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के हम यहाँ रखेंगे।

0: मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा जैसी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ, आज उसे ही पहने। हाँ, वो डेजी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे। हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ, जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
2: डेजी,
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
2: ये क्या कर रही हो तुम डेजी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
2: डेजी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ले।
2: नहीं नहीं नहीं, डेजी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रहे।
2: नहीं नहीं, डेजी ये सच नहीं है। मैं कहता हूँ डेजी,
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
2: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
2: ओह नो,
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूं।
2: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ।
2: नहीं नहीं, डेजी, डेजी,
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूं। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। अरे, ये आपको क्या हो रहा है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
2: डेजी, ये मेरी नजर टूट रही है। डेजी, डेजी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। डेजी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो, मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? करो करो डॉक्टर को बुला लिया। भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसी हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: आप क्या सोचने लगे?
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं?

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: मुझे इतना मौका उस वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं छोटी थी। उसके बाद में जब मैं बड़ी हो गई तब तो मैं काफी उनके साथ में हर एक प्रोग्राम्स में जाती
1: जाना
0: थी।
1: हुआ जी।
0: घर में कभी कोई फिल्मी माहौल नहीं रहा, हमारे घर में कोई भी फिल्मी माहौल बिल्कुल नहीं रहा, तो इसीलिए हम काफी अछूते रहे। उनके साथ प्रीमियर में जाना या फिल्म की रिलीज हुई या पार्टीज नहीं होती थी, ना हमारे घर में होती थी ना मेरे बापू हमको कोई पार्टीज में ले जाते थे।
1: जी
0: लेकिन ऑफिशियल प्रोग्राम रहा, जैसे कोई प्रीमियर है या कोई, जैसे उनको कुछ अवार्ड मिल रहा है या ऐसा कोई है, तो उसमें हम जाते थे, तो हम अछूते रहे फिल्मी माहौल से। एकदम सीधे सादे व्यक्ति,
1: और सिद्धांतवादी।
0: सिद्धांतवादी, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं कि भाई आपको यही करना है, आपको यही करना है, नहीं। लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, तो कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं। जब कोई अवार्ड फंक्शन या हुआ, शुरुआत में तो वो अवार्ड फंक्शन में जाते थे, फिर उन्होंने वो भी बंद कर दिया, अवार्ड
1: अच्छा
0: लेना ही बंद कर दिया।
1: अच्छा
0: हाँ, तो जैसे घर में माहौल कैसा था, सीधा सादा, मध्य प्रदेश के हम लोग, मेन मेरे पिताजी, मेरी माँ गुजराती,
1: जी
0: तो दो कल्चर थे घर में। घर में बापू भी माँ के साथ गुजराती में बोलना शुरू कर दिया था,
1: हाँ
0: तो किसी बाहर वाले को तो पता ही ना चले कि ये इंसान गुजराती नहीं है, हिंदी
1: अच्छा
0: भाषी है, उतना अच्छा बोलते थे।
1: जी
0: लेकिन घर में ये भी नहीं कि आपको हिंदी में ही बोलना है या गुजराती में, हमारी मर्जी, हम जो बोलना चाहें,
1: इतनी फ्रीडम थी
0: फ्रीडम। हाँ,
1: जी।
0: तो वो फ्रीडम भी बहुत अच्छी रही हमारे लिए जिंदगी में, मेरी और मेरी बहन के लिए, कि किसी प्रकार का फोर्सफुली हमको कोई चीज करने को नहीं बोली गई। नहीं तो इतने पुराने विचार के जो मध्य प्रदेश से आए हुए एक इंसान थे, यूपी में उनकी पढ़ाई हुई, और बॉम्बे में आके एक अपने आप को ऐसे ढाल लेना कि दिमाग से भी काफी फॉरवर्ड विचार, उनकी विचारधारा कुंठित नहीं थी, है ना, मन में कोई कुंठा नहीं थी।
1: नहीं थी जी।
0: मेरी माँ और उनकी शादी, तो उन्होंने सात फेरे की शादी नहीं की ना, रजिस्टर्ड मैरिज थी।
1: अच्छा जी। और हमने ये भी पढ़ा कि उन्होंने जब विवाह के लिए आपकी माताजी को देखा तो कहा कि मैं आग हूं और तुम पानी हो, अगर पानी बनकर रहोगी तो ही मैं विवाह करूंगा। तो इस तरह की बातें भी कभी परिवार में हुई होंगी
0: बहुत बहुत बहुत सारी
1: जी।
0: बातें हैं। तो शादी के बारे में ये बताऊं कि उन्होंने, ये कोई मतलब लव मैरिज नहीं थी, ये प्रॉपर अरेंज मैरिज थी। मेरे नाना नानी, वो भी काफी फॉरवर्ड विचारधारा के थे, और उन्होंने देखा कि ये कवि है, ये लड़का हमारी ही कम्युनिटी के हैं, हमारी कास्ट के हैं, मतलब ब्राह्मण हम लोग परिवार से हैं, तो नाना नानी ने सोचा कि हम अपनी बेटी को क्यों ना हम इनके लिए हम लोग सोचें कि विवाह बंधन में दोनों बंधे। तो मेरे पिता को पूछा गया कि हमारी बेटी है तो हम चाहते हैं कि आप शादी कीजिए। तो ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बोल रही हूँ,
1: जी।
0: आगे तो बहुत सारी बातें हुई होगी इनके बीच में। तो बापू ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता हूँ पहले।
1: अच्छा।
0: तो मेरी माँ हमको बताती थी कि पता नहीं क्या बात करेंगे, तो मैं तो खड़ी हो गई कि हाँ ठीक है, हाथ जोड़ के मैंने कहा कि देखिए जो पूछना है पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं आग हूँ, मतलब मेरी जो तासीर है
1: जी वो गर्म
0: मैं
1: है।
0: गर्म है, मैं नाराज भी बहुत होता हूँ, तो मैं आग हूँ, क्या आप पानी बन के रहोगी? दोनों आग होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। तो मेरी माँ ने तो कहा कि मैं तो कुछ समझी नहीं, मैंने हाँ कह दिया।
1: उस जमाने में कितनी सादगी और सीधापन होता था ना।
0: तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो बात हो गई, पक्की हो गई। दूसरी शर्त तो ये रखी मेरे पिता ने, मैं बिल्कुल रिचुअल्स में नहीं मानता हूँ और मैं बिल्कुल फेरे नहीं करूंगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड मैरिज हो। नाना ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। वो बोलते हैं मैं कोई इसमें ज्यादा तामझाम नहीं चाहता हूँ, एकदम सादा विवाह होगा, आप लोगों की तरफ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं कुछ
1: अच्छा
0: लेना नहीं चाहता हूँ,
1: जी।
0: जो मैं दूंगा वही कपड़े वो पहनेंगी। तो ना मेरे नाना नानी ने कुछ मेरी माँ को दिया, ऑफ कोर्स दो तीन साड़ियां तो दी
1: हाँ
0: होगी,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसी वक्त इतने फॉरवर्ड विचार के मेरे नाना नानी और मेरे बापू।
1: पिता जी।
0: अब आप सोचेंगे कि फिर उनके परिवार का क्या? उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से कोई नहीं आएगा, सिर्फ मैं रहूंगा। क्यों?

0: क्योंकि यहाँ पर सब आएंगे तो मुझे बोलेंगे कि मुझे शूटिंग दिखाओ सब
1: अच्छा
0: तो बोले मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर सब लोग पूरे वहां से आ जाए लोग, और फिर मैं उनको एक एक स्टूडियो में ले जाके शूटिंग दिखाता रहूँ।
1: अरे हाँ
0: तो उन्होंने बोल दिया वहां पर, मैं शादी कर रहा हूँ, हम लोग को कोई यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग आ रहे हैं माँ को
1: जी
0: लेके।
1: जी
0: तो वहां से कोई नहीं आया, वहां मेरी दादी मेरे दादा परेशान। उस वक्त तो मोबाइल तो कुछ था नहीं,
1: जी
0: ना तो कोई ऐसे टेलीफोन्स थे, तो उनको लगा कि क्या हुआ होगा, कैसी लड़की होगी, किससे शादी की है। तो फिर मेरे दादा वहां से आए देखने के लिए कि लड़की कैसी है। तो उन्होंने बाहर आके देखा, घर पे कोई नहीं था। नाना ने कहा अरे आप आइए आइए, उनको पता था कि ये उनका फोटो देखा था। अरे नारायण जी आप आए हैं, आइए। बोलते माफ कीजिए लेकिन हमको भेजा गया कि देखने के लिए कि बेटे ने शादी किससे की है।
1: जी
0: तो दादा और मेरे नाना दोनों बैठे, प्रदीप जी को मतलब मेरे बापू को बुलाया गया कि देखिए आपके पिताजी आए हैं। बोलते अरे आप क्यों आए, तो हम तो आ ही रहे हैं अगले हफ्ते। बोलते नहीं, घर में से सबने कहा कि जाके देख के आओ भाई किससे शादी की है।
1: जी
0: खुश हुए, बहुत सेटिस्फाइड हुए, परिवार को देख के खुश हुए, माँ को देख के खुश हुए। और वैसे मतलब ये जो
1: विवाह
0: यूनियन
1: हाँ
0: था
1: वो संपन्न
0: विवाह
1: हुआ।
0: का, तो वो खुशी
1: जी
0: खुशी उसकी समापन हुआ,
1: जी जी तो आपकी माँ जिंदगी भर एक पानी बनकर रही
0: एक
1: उस
0: पानी बन के
1: दंपत्ति
0: रही।
1: जीवन में।
0: हाँ एक्चुअली वो भी आग थी लेकिन वो पानी बन के रही।
1: जी ये सबसे बड़ी बात है। जी
0: क्योंकि मेरी माँ को, अब ये बताऊं कि उनको बचपन से ये सिखाया गया कि चाहे आप महिला हैं लेकिन आप लड़के की तरह आप लाठी भी चलाएंगी, और आप कहीं कुछ होगा तो आप उसको गले से भी पकड़ेंगी,
1: वाह
0: मतलब
1: उनकी शिक्षा दीक्षा भी इस माहौल
0: ऐसी
1: में की
0: थी।
1: गई
0: हाँ
1: नाना नानी के द्वारा।
0: हाँ ऐसे ही उनको सिखाया गया कि कोई भी चीज़ में आपको पीछे नहीं हटना है। तो वो भी उनकी तासीर भी आग वाली थी, लेकिन जब बापू से शादी हुई तो उन्होंने अपने आप को ढाल लिया।
1: जी।

0: जब हम बात कर रहे हैं प्रदीप जी के व्यवहार के बारे में, तो पिता के रूप में आप उन्हें किस रूप में देखती रही, उनके बारे में आपके क्या विचार बने?
1: मुझे कब पता चला कि ये मेरे पिता कोई खास है? कब पता चला? जब मैं स्कूल में थोड़े आगे बढ़ी, जैसे मैं 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में आई, तब मुझे पता चलने लगा कि मेरे पिता कोई स्पेशल है। तब तक तो बच्चों को पिता पिता होते हैं,
0: बिल्कुल
1: है ना, ये नहीं पता चलता कि दूसरे के अलग हैं, हमारे अलग हैं, लेकिन मेरे अलग कैसे हैं? क्योंकि जैसे ही 26 जनवरी आई, प्रिंसिपल बोलेंगे मितुल गाना गाएगी। मैंने बोला मेरे पीछे क्यों पढ़ते हैं लोग? फिर पता चलने लगा कि क्योंकि मेरे पिता के देशभक्ति के गीत हैं, लोग सुनते हैं, तो उसी के कारण वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप गाओ। तो मतलब इस तरह से एक पिता का क्या एक बड़ा रुतबा था, या उनकी क्या हाइट थी, और समाज में वो क्या थे, वो सब पता चलने लगा
0: जी।
1: और खैर वो तो बड़े इंसान थे, लेकिन उन्होंने घर में तो कभी नहीं बताया, मतलब दिखावा नहीं किया।
0: घर में एक आम पिता की
1: आम
0: तरह
1: पिता
0: वो रहे
1: की तरह
0: जी।
1: मेरी माँ ने सब संभाला हुआ था, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे सब्जी लेने के साथ में जो भी बैंक का काम हो या इनकम टैक्स का काम हो, सब मेरी माँ करती थी। तो मेरे पिता को एकदम अछूता रखा घर के कोई भी टेंशन से। तो उनको टेंशन घर में कोई नहीं रहा कि कोई स्ट्रेस नहीं रहा कि ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, वो सब करती थी। इसके लिए उनकी जो लिखने की शक्ति
0: जी बिल्कुल
1: वो और बढ़ी मेरी माँ के कारण।
0: बहुत बड़ी बात, और तभी वो राष्ट्रकवि तक का उन्हें दर्जा दिया गया, क्योंकि एक स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है इस रूप में, और आपकी माँ ने उसे सार्थक कर दिखाया।
1: जी जी।
0: तो मितुल जी, प्रदीप जी को देशभक्ति और मानवीय संवेदनाओं से भरे गीतों के लिए जाना जाता है, तो उनके गीतों में देशभक्ति का स्वर मुख्य रूप से कैसे मुखर हुआ?
1: जैसे मैंने कहा कि उनकी जो स्कूल की जो पढ़ाई थी, जो एजुकेशन था, वो रतलाम इंदौर वहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। लेकिन जब वो कॉलेज गए, तो कॉलेज वो गए इलाहाबाद में, क्योंकि उनके बड़े भाई मतलब मेरे ताऊजी वो इलाहाबाद में रहते थे और वहाँ पर उनका घर था। तो फिर मेरे दादा ने अपने छोटे बेटे रामू उसको भेजा इलाहाबाद, मतलब रामू अभी इसलिए बोल रहे हैं कि वो तब विद्यार्थी जीवन में थे। तो वो इलाहाबाद में गए, वहाँ पढ़ाई उनकी शुरू हुई कॉलेज की। वहाँ पर उसी वक्त आनंद भवन के आसपास में काफ़ी अपनी जो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई का जो एक सेंटर पॉइंट था वो इलाहाबाद में था, क्योंकि आनंद भवन में मोतीलाल नेहरू का घर था, जवाहरलाल जी थे, और बड़े बड़े जो वहाँ के नेता थे वो वहाँ पर रोज ही उनके वहाँ कोई मीटिंग होती थी, कुछ होता था, और इनका घर इलाहाबाद में आनंद भवन के पीछे था। तो तभी से एक माहौल भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई
0: जी,
1: वो उन्होंने वहाँ बहुत नज़दीक से देखा, और इलाहाबाद में ही काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी कि जहाँ पर उनको इसमें इन्वॉल्व होने का समय मिला, कि जैसे विद्यार्थी जीवन तो पूरे दिन में हो गया, शाम को चले गए सुनने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो इसी बहाने उनको लिखने में एक बदलाव आ गया। पहले वो प्रेम की कविताएं लिखते थे, और उसमें से फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को राष्ट्रभक्ति के ऊपर, मतलब वो अपने आप से हुआ, अनायास हुआ है, ये
0: मतलब
1: कोई जानबूझ के
0: प्रेरित हुए, क्योंकि माहौल ही ऐसा था, राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ चुका था।
1: हाँ।
0: तो उस माहौल में जब वो उन्होंने सांस ली, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो देशभक्ति का जज्बा है
1: हाँ।
0: वो आम जन तक पहुंचना चाहिए।
1: हाँ। और उसी दौरान चंद्रशेखर आजाद की भी वहां हत्या हुई
0: जी।
1: इलाहाबाद में, तब भी प्रदीप जी वहीं पर थे।
0: अच्छा।
1: हाँ। तो ये सब चीजें उनको मन में बहुत अंदर तक वो झकझोर दिया।
0: हाँ,
1: और
0: तब
1: फिर
0: तक वो कवि प्रदीप ही थे, मतलब गीतकार नहीं बने थे फिल्मों में।
1: नहीं, वो तो, ये तो मैं उनकी विद्यार्थी जीवन की बात कर रही हूँ ना, यूनिवर्सिटी की। वो तो अपना पढ़ाई लिखाई खत्म होके वो जब ग्रेजुएट हो गए तब वो आए थे
0: जी
1: मुंबई।
0: जी हाँ, तो आप बता रही थी उसी दौरान
1: चंद्रशेखर आजाद की भी उसी वक्त इलाहाबाद में उनकी हत्या कर दी गई, और वो काफी, मतलब वो आंदोलन काफी तेज हो गया
0: उग्र
1: था
0: रूप
1: उस
0: में।
1: वक्त।
0: हाँ जी।
1: तो वहीं से उनका जो लिखने का जो स्टाइल है वो देशभक्ति के ऊपर ज्यादा हो गया शुरू।
0: जी, क्या आपको याद है कि उनकी पहली देशभक्ति कविता कौन सी रही?

0: होगी आप हमें अगर सुनाना चाहें, या कोई भी उनकी देशभक्ति कविता जिसे आपको प्रेरित किया हो जिस कविता ने।
1: उन्होंने जो ये उसी वक्त जो लिखा था जब चंद्रशेखर आजाद की हत्या हुई
0: जी
1: थी,
0: जी
1: तो मैं आपको वो सुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: और काफी कुछ उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी, तो मैं आपको वो थोड़ा सा सुना दूँ। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ही ये
0: जी
1: कविता
0: जी
1: लिखी
0: बिल्कुल।
1: है। वह इस घर का दिया था, विधि ने अनल स्फुल्लिंगों से उसके जीवन का वसन सिया था,
0: बहुत खूब।
1: जिसने अनल लेखनी से अपनी गीता का लिखा प्राकथन, जिसने जीवन भर ज्वालाओं के पथ पर ही किया पर्यटन, जिसे साध थी दलितों की झोपड़ियों को आबाद करूं मैं, आज वही परिचय विहीन सा पूर्ण कर गया अनंत के शरण। वह था जन्मजात विद्रोही जो विप्लय के तले जिया था।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: एक थोड़ा सा अंश है, कविता तो लंबी है, लेकिन
0: जी जी
1: ये यही
0: जी
1: कविता है जो उन्होंने
0: लिखी
1: उसी वक्त
0: उसी
1: लिखी।
0: दौरान उनके भीतर ये अंकुर पैदा हुआ
1: अंकुर
0: और
1: पैदा
0: वहां
1: हुआ।
0: से वो एक देशभक्त कवि के रूप में उभर कर आए।
1: हाँ
0: जी तो मित्तुल जी, आपसे हम बहुत बातचीत करने वाले हैं। आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं पहले, जो आपको बेहद पसंद हो, चाहे वो प्रदीप जी का गीत हो या आपकी अपनी पसंद का कोई गीत हो।
1: मैं तो सोचती हूँ कि इसी वक्त जो हम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ये सुनाएं, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है,
0: जी
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है।
0: बिल्कुल, हम भी ये गीत सुनना चाहते हैं और इसी गीत पर हम आगे भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। पहले सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: मितुल जी, गीत को सुनने के बाद फिर से देशभक्ति का जो ज्वार है वो हमारे भीतर भी हिलोरे लेने लगा है। ये फिल्म किस्मत का गीत था और इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा कि जब ये गीत या ये फिल्म जब थिएटर में आई तो लोग इस गीत को सुनने के लिए जाते थे और बार बार इस गीत की डिमांड करते थे कि इसे पुनः सुनवाया जाए और रील को वापस रिवाइंड किया जाता था और बार बार इस गीत को सुनाया जाता था। और सबसे बड़ी बात कि तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी इस गीत से बहुत क्रोधित हो गई थी।
1: अब देखिए, उस वक्त तो मैं तो थी नहीं इस दुनिया में
0: जी
1: लेकिन जो बातें सुनी, और हमारे घर में हमेशा ना बातें बहुत होती थी।
0: जी
1: जैसे हम लोग कभी बैठे, हमारे कोई रिलेशंस में रिश्तेदार आए, दोस्त आए बापू के, तो बातें होती थी, तो तब मैंने ये सब सुना था। और उसमें ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स इस गाने को सुन के बहुत ही नाराज हो गए, आग बबूले हो गए। उन्होंने कहा कि ये कवि को पकड़ो, इसको
0: बिल्कुल
1: गीतकार को पकड़ो, इसने हमारे खिलाफ ये बहुत बड़ा खतरनाक सा गीत लिखा है। तो उनके लिए समन्स निकल गया, अरेस्ट वारंट। अब अरेस्ट वारंट निकला तो हमारे घर के लोग सब परेशान,
0: जी
1: माँ परेशान, दूसरे सब रिश्तेदार सब परेशान कि अब क्या होगा, इनको पकड़ के ले जाएंगे। उनको अंडरग्राउंड कर दिया, अंडरग्राउंड मतलब कहीं
0: भूमिगत कर दिया।
1: भूमिगत, भूमिगत। तो भूमिगत हो गए तो ठीक है, ये लोग तो ढूंढते रहते थे कि कहाँ है, जब हाथ में आएंगे तो पकड़ लेंगे। उसी दौरान एक अपने जो भारतीय एक ऑफिसर थे, वो वहां पर ब्रिटिशरों के साथ काम करते थे।
0: जी
1: उन्होंने कहा कि आप लोग, ये इनको वारंट तो दिया है आपने, लेकिन आपको पता है कि ये गीत हमारे खिलाफ नहीं है। तो ब्रिटिशर्स बोलते, मतलब वो जो वहां के ऑफिसर बोलते, कैसे नहीं है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो हमको ही बोल रहे हैं ना कि निकलो यहां से। नहीं, देखिए ऐसा है साहब, इसमें ये लिखा है कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, अब न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी।
0: बिल्कुल
1: तो ये तो जर्मनी और जापान के खिलाफ का गाना है, हमारा तो नाम लिया नहीं है। अच्छा ऐसा है? तो वो बात
0: जी
1: सुन के फिर अरेस्ट वारंट वापस हो गया, प्रदीप जी भूमिगत थे वहां से वापस आ गए और सब ठीक हो गया।
0: लेकिन एक जंग जो है वो कहीं ना कहीं छिड़ गई थी, कहते हैं शब्दों की जो जंग थी,
1: शब्दों
0: क्योंकि
1: की जंग, और वो शब्दों की जंग के कारण लोग काफी इसमें आंदोलित हुए थे और सब लोग गा रहे थे। और आज तक अगर आप सुने तो आज भी ये गाना उतना ही पॉपुलर है।
0: बिल्कुल। और इस गाने को सुनने के बाद आज भी हमारे जो है रोए खड़े हो जाते हैं और हम एक अजीब सी स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि देशभक्ति का ज्वार जो हिलोरे लेने लग जाता
1: और
0: है।
1: दूर हटो ये दुनिया वालों, तो अभी भी हम दुनिया वालों को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान पे नजर मत डालो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और आज भी उनके लिखे जो गीत हैं वो आज भी लोगों को देशभक्ति से जोड़ते हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं कि आज इस वक्त भी जब उनके गीत सुने जाते हैं तो लोग उनके मुरीद हो जाते हैं?
1: ये उनकी स्टाइल है, मतलब स्टाइल ये है कि उन्होंने इतना सिंपल सादा, उन्होंने जो लिखना जो था वो हर एक के हृदय में कैसे उतर जाए, ये उनकी एक स्टाइल थी। वो जानबूझ के नहीं करते थे, वो
0: जी
1: उनकी एक स्टाइल थी कि वो जितना हो उतना सिंपल सी भाषा और लोगों को समझ में आए ऐसी भाषा। तो देशभक्ति की भाषा में भी आप कितने क्लिष्ट शब्द वापरेंगे तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना सरल होगा, सरल भाषा होगी, तो आज भी अगर कोई कोई भी गीत सुनिए, चाहे वो गांधी जी के ऊपर हो, चाहे वो लोगों को गाइड करने का हो कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती
0: कश्ती
1: निकाल
0: निकाल
1: के,
0: के,
1: तो लोग समझते हैं और समझने के बाद वो अपने आप में उतार लेते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो भाषा थी वो बहुत ही सरल और सीधी भाषा थी जो लोगों के रूह तक सीधे पहुंचती थी, सबसे बड़ी बात
1: सही
0: ये
1: बात है।
0: है ना। और आपने कहा कि गांधी जी पर भी उन्होंने ये गीत लिखा कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे वो?
1: बहुत ज्यादा गांधी जी उनके हीरो थे, तो गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने

0: तो वो आप देखिए कि एक बच्चों के भाषा में लिखा
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल
0: तो वो बच्चों की भाषा है चाहे, लेकिन वो भाषा इतनी सरल है। आप सुनिए तो आखिरी में, आप जब उनको सुनेंगे कि जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, तो साबरमती के संत, बस ये चीज जो है वो लोगों को बहुत पसंद आई। और वो गाना आज भी इतना ही, जब भी गांधी जयंती होती है, इस गाने के
1: कोई
0: सिवाय वो पूरी नहीं
1: गाना जी
0: होती।
1: बजता नहीं। और उनकी जो सबसे बड़ी बात है कि उनकी कविताओं में, गीतों में सरल हिंदी और आम बोलचाल की भाषा का बहुत ज्यादा असर था। और चाहे उन्होंने बापू पर गीत लिखे हों या भजन लिखे हों, सभी की भाषा इतनी सरल थी कि हमारे आत्मा तक उसका बिल्कुल पहुंचना संभव हुआ।
0: जी
1: तो आपकी पसंद का एक गीत और सुन लिया जाए, आप कहें तो ये गीत सुना जाए,
0: यही गीत
1: साबरमती के संत।
0: साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल।

0: मितुल जी, हमारे भारतीय सिनेमा की अगर हम बात करें, ऐसे बहुत से गीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, या यूं कहें कि बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए जिन्होंने संगीत भी दिया और गाया भी, है ना? लेकिन ऐसे गीतकार और गायक बिरले हैं जिन्होंने अपने लिखे गीत को स्वयं गाकर अमर ख्याति प्राप्त की हो। तो आप समझ सकते हैं मैं कवि प्रदीप जी की ही बात कर रही हूं। उनका ये गायन, जो उन्होंने गीत गाए हैं फिल्मों में, भजन गाए हैं फिल्मों में, ये गायन कैसे शुरू हुआ, और क्या कोई शास्त्रीय संगीत की उन्होंने शिक्षा ली थी, या किसी संगीतकार या कलाकार की मांग पर उनका गाना शुरू हुआ?
1: ऐसा है कि मेरे बापू बड़नगर में, उनकी पैदाइश बड़नगर मतलब उज्जैन के पास का एक छोटा सा कस्बा बड़नगर
0: जी,
1: और वहां पर भी एक छोटा सा गांव था गाराखेड़ी। तो मेरे दादाजी थे वो वहां के जमींदार थे गाराखेड़ी के, और बड़नगर में उनका घर था। गाराखेड़ी में अपने बच्चों को लेके वो हमेशा वहां जाते रहते थे, वहां खेत खलिहान थे। तो वहां पर एक भील कम्युनिटी, भील रहते हैं,
0: भील जाति,
1: तो भील जाति के लोग, तो भील जाति के लोगों के साथ मेरे बापू भी, उनको बोलेंगे रामू, क्योंकि रामू छोटा सा बच्चा, और रामू की माँ मतलब मेरी दादी वो खुद बहुत अच्छा गाती थी।
0: अच्छा। हाँ,
1: तो वहाँ क्या होता था, सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाना, पानी भरना, फिर अपने चक्की चलाना, गेहूं डाल के आटा बनाना, वो रोज का काम रहता था गाँव में। तो मेरी दादी जो है वो चक्की चलाते चलाते गाना गाती रहती थी, और रामू और उनके बड़े भाई साथ में बैठ बैठ के वो सुनते रहते थे। तो वो सुनते सुनते वो जो समझ में आता है कि गाना कैसे होता है, और वो कोई शास्त्रीय संगीत नहीं, लोकगीत, वहां पर लोकगीत बहुत लोग गाते थे
0: जी।
1: तो ये भील जाति के लोग भी, उनकी लोकगीत की एक परंपरा थी, रामू वहां जाके बैठे उनके साथ बैठ के गाए। तो आप अगर उनकी आवाज में देखेंगे ना, जो खनक है
0: जी,
1: वो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये नेचुरल है, कहीं सीखी हुई
0: नहीं है,
1: सारे गामा नहीं है,
0: कॉपी की भी नहीं है,
1: कॉपी की हुई नहीं है, और कोई रियाज नहीं है, ठीक है? तो ये जो आवाज उनकी है वो एकदम अलग क्यों है, इसीलिए फिर यहाँ पर जब वो कवि बने, लेखक बने, गीतकार बने, तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तो वो कहते थे कि कवि जी आप ही अच्छा गाते हैं, तो क्यों ना आप ही ये गाना गा दीजिए। तो ऐसे ऐसे करके एक एक गीत उनका गाने का शुरू हो गया,
0: जी
1: और उनके गाए हुए जितने गीत है वो सब आज तक पॉपुलर है।
0: बिल्कुल।
1: कोई लाख करे चतुराई, हाँ, फिर पिंजरे के पंछीरे, आज भी पिंजरे के पंछीरे सुन के भी लोग रोते हैं।
0: बिल्कुल, वो दर्शन
1: छोटे पिंजरे में पंछी क्या सोचता होगा, वो उड़ नहीं पा रहा है। तो ये दर्शन के गीत, और भी कई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान, हाँ। और मतलब ये मैं कहूं कि इतने सारे गीत हैं, हमने जग की अजब तस्वीर देखी, हाँ, अरे बाप रे, मैं आपको क्या बताऊं,
0: मुखड़ा देख ले दर्पण में,
1: मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो उनके गाए हुए हर एक गीत लोगों को छू गए हैं। आज भी लोगों के पास सीडीज, कैसेट्स, और उनके प्रदीप जी के गीतों की ये पूरी एक
0: सीरीज है उनके पास, हाँ, और आज भी उनके
1: सुनते हैं लोग,
0: प्रशंसक हैं जो आज भी शिद्दत के साथ प्रदीप जी को पसंद
1: सुनते
0: करते
1: हैं।
0: क्या कोई गीत अभी आप सुनना पसंद करेंगी?
1: पिंजरे के पंछी सुनिए,
0: चलिए सुनते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: मितुल जी, जब मैं छोटी थी हमारे घर में भी रेडियो का माहौल था। शुरू से प्रदीप जी के गीत हम सुना करते थे, तब शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे समझ पकड़ी, इन गीतों को सुना समझा, लेकिन जितना समझा है वो ये समझा है कि बिरले कलाकार थे वो, और ऐसे कलाकार कहीं मिलते नहीं हैं जिन्होंने निस्वार्थ लिखा, प्रतिद्वंदिता नहीं रखी, पॉपुलर होने के लिए नहीं लिखा, वो प्रोफेशनल नहीं थे, हृदय के कवि थे, दिल के कवि थे।
1: एकदम सही कहा,
0: दिल से लिखा,
1: दिल से जो लिखा दिल से लिखा।
0: और सबसे बड़ी बात कि उनके गीतों में खरी सच्चाई भी हमें सुनने को मिलती है, और आमतौर पर जो इंसानी कमजोरियों को उजागर करती है, तो यानी उनकी काव्य शैली में वो जबरदस्त प्रवाह होता था जिसमें वो 100% की बात भी जो है चुटकियों में कह डालते थे। तो उनके कई गीत हैं, जैसे देखते रहे संसार की हालत का अभी आपने जिक्र किया, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, पिंजरे के पंछी रे या मुखड़ा देख ले दर्पण में, यानी कवि प्रदीप जी ने अपनी रचनाओं से जो संसार रचा वो अद्वितीय संसार है। मितुल जी, तो आप उसे कैसे देखती हैं आज जब आप इस उम्र तक आ गई हैं, हम कवि प्रदीप जी के बारे में बात कर रहे हैं, आप रेडियो से उनके गाने सुनती होंगी, कहीं जाती होंगी उनका जिक्र होता होगा, उस समय क्या माहौल था उनके गीतों को सुनकर, और आज क्या माहौल है, एक सुपुत्री क्या महसूस करती है?
1: आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तब मैंने जैसे कहा कि उस वक्त तो रेडियो ही था और रेडियो में ही उनके गाने बजते थे। तो हमारे वहां पर एक हमारा घर में काम करने वाला भाई थे हमारे, मतलब जो घर का काम करते थे, उनके पास भी एक रेडियो रहता था। तो दोपहर होती थी तो वो उसको आराम करने के लिए वो बैठ जाते थे, लेकिन जब बापू के गाने आते थे तो रेडियो जोर से बजा के साहेबचा गाना आला साहेबचा, मतलब वो मराठी में दौड़ दौड़ के हमको के देखो देखो आई का सर्व लोग आई का, तो सुनिए सब लोग। तो ऐसा होता था, वो माहौल था घर का। मैं छोटी थी, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उसमें एक लाइन आती है,

0: फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो प्यारे बापू के प्राण, मैं सोचती थी कि मेरे बापू,
1: अच्छा जी
0: हाँ, तो मुझे ये लगता था कि मेरे बापू के प्राण रो रहे हैं,
1: हाँ
0: और मैं भी साथ में रोना शुरू करती थी। सब सब लोग, तुम क्यों रो रही हो?
1: हाँ
0: मैंने बोला, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। तो वो एक लाइन मुझे अभी भी याद है कि मैं जोर जोर से रोती थी और मेरी माँ मुझे
1: चुप
0: वो कराती थी कि
1: कराती
0: नहीं, ठीक है, ये बापू मतलब गांधी बापू,
1: थी।
0: और तब ये नहीं पता था कि बापू मतलब गांधी जी।

0: आपने कहा कि आज मैं क्या सोचती हूँ, हर एक दुख की घड़ी में कोई भी गीत आप ले लीजिए तो आपको मन की शांति देगा।
1: जी,
0: जैसे कहीं पर हम लोग कोई दुख की घड़ी हो या कहीं पर ऐसा हो माहौल के जहाँ हम लोग सोचते हैं कि अरे हमारा कुछ गलत हो रहा है या हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है, तब अगर हम ये सुने कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, जरा समझो इसकी सच्चाई रे, गाने से भी हम अपने आप को उसमें से निकल जाते हैं कि हाँ ठीक है, कई लोगों ने ठोकर खाई है तो हम क्या हैं।
1: मतलब हमें जीवन दर्शन समझ आता है
0: दर्शन,
1: और अपने मन को हम समझा लेते हैं
0: कि
1: अच्छा इस गीत में इस तरह से कहा गया है कि कर्म का लेख मीठे नारे
0: हाँ,
1: भाई, तो हमें भी भुगतना है अगर हमारे कर्मों में ये
0: कर्मों
1: सब
0: में कुछ
1: लिखा
0: गलत।
1: है तो
0: और दूसरा गीत है जो दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, तो हमको प्रेरित करते हैं कि आप दूसरों का दुखड़ा जो है दूर करने की कोशिश कीजिए, आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो आपका भी जो दुख है वो भगवान ले लेंगे, तो दूसरों को आप मदद करिए। तो ये ऐसे ऐसे उनके बहुत साधारण से सरल शब्द है आज जो मैं अभी समझ पा रही हूँ कि उनके हर एक गीत को हमको एक एक लाइन को समझना बहुत जरूरी है।

अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था पहला भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है। उजाले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में 6वीं-7वीं शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बालार्जुन से जुड़ी दुर्लभ तांबे की 3 पट्टिकाएं भी मिली हैं।
1: ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में चोलकालीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को लौटाई हैं, जिससे दुनिया भर के तमिल समुदाय में विशेष उत्साह है। श्री मोदी ने कहा कि ये पट्टिकाएं चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ उनके संबंधों को दर्शाती है।
1: इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राज राजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए किसानों को समय पर सलाह देना, पंचायत स्तर पर सक्रिय भागीदारी और योजनाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है। जल शक्ति मंत्रालय कल नई दिल्ली में जल अनुसंधान और विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जल अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जल संसाधन प्रबंधन, पेयजल और जलवायु परिवर्तन से निपटना है। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने आज 27वें नौसेना प्रमुख का कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि चुनौतीपूर्ण, जटिल और अनिश्चितताओं से भरे परिवेश को देखते हुए नौसेना सक्रिय रूप से तैनात है। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक लॉन में जनरल सुब्रमणि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पैट हैरिगन के साथ बातचीत की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस बातचीत में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग विस्तार और हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते के करीब है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि

0: बातचीत विफल होने पर सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य के लॉन्गव्यू शहर में पिछले मंगलवार को एक रासायनिक टैंक में विस्फोट से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। अभी तक 9 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 8 लोगों के मरने की आशंका है। इनमें छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुराह उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर हुई, जब एक कार खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद से वाहन में सवार सभी लोग लापता हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हर रोज की तरह आज भी आप सुनेंगे भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदन 5:10 पर, और 5:30 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। आज के इस कार्यक्रम में आप मुख्य रूप से सुनेंगे विश्व फुटबॉल दिवस पर हमारी विशेष पेशकश, रोहतास जिला फुटबॉल तब और अब। इस विषय पर अर्चना कुमारी बातचीत करेंगी पूर्व सचिव जिला फुटबॉल संघ एनांग अहमद से।

भोजपुरी लोकगीत आप सुनते हैं संध्या 6 बजे और 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनिएगा। और 6:30 पर हमारे ग्रामीण श्रोता अपना प्रसारण सुनेंगे गांव घर। आज के इस कार्यक्रम में ददन पांडे जी जानकारी देंगे नशा की बढ़ती प्रवृत्ति एवं हानियों से संबंधित, अथवा इसके बढ़ती गर्मी और हमारा दायित्व चर्चा का विषय रहेगा। हमारे केंद्र से आप भोजपुरी फिल्म संगीत सुनते हैं सांझ गीत कार्यक्रम में 6:40 पर, और 7:15 पर हम प्रस्तुत करेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास, सुनना नहीं भूलिएगा।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से आप प्रादेशिक समाचार सुनते हैं 7:30 पर और जिले की हलचल 7:45 पर और 7:50 पर हम आपके लिए पेश करेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

गजलें और गीत सुनिएगा 9:15 पर, और 9:30 पर विविध भारती मुंबई से आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार। रात्रि 10 बजे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रस रंग सुना जा सकेगा, और 10:30 पर सदाबहार फिल्मी नगमे सुनिएगा चित्रपट तराने के अंतर्गत। सभा का समापन होगा रात्रि 11:10 पर दिल्ली से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के साथ। तो यह थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा आपके लिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए वंदन कार्यक्रम के अंतर्गत आज की ये पहली भक्ति रचना।

8:45 का समय है दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या का और रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। महफिल के अंतर्गत

बड़ा सुंदर वर्णन है। मीराबाई को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए और वो भी स्वप्न में, तो देखिए कितनी सुंदरता से वर्णन किया है।

0: जब मैं सोने के लिए अपने शयन कक्ष में गई तो लेटते ही मुझे नींद आ गई और स्वप्न में प्रभु आ गए।
1: पलटा पर सोवत कामिनी रे, ज्ञान ध्यान सब

मीरा से प्रश्न किया कि मैंने लीनो गोविंद मोल, इसका तो अर्थ हुआ कि गोविंद खरीदा है, मोल लिया है। जब भी कुछ खरीदा जाता है तो कुछ मूल्य चुकाया जाता है, तो अगर गोविंद खरीदा है तो उसका मूल्य क्या था, क्या चुकाया उसके बदले में? तो मीरा का

अभी आपने अनूप जलोटा के स्वर में यह भक्ति रचना सुनी और अब आइए सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद शनि मंत्र।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

तो अभी आपने नवाब राजा और सवाब राजा को सुना, और इन्हीं रचनाओं के साथ ही भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन अब यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: Hey guys, congratulations! आज तो पार्टी चाहिए।
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। आज के इस कार्यक्रम में आप

मुख्य रूप से सुनेंगे पूर्व सचिव जिला फुटबॉल संघ सैयद इनाम अहमद से आकाशवाणी की बातचीत। विषय होगा रोहतास में फुटबॉल तब और अब, संदर्भ विश्व फुटबॉल दिवस।

विज्ञान एवं पर्यावरण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अर्चना का नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। श्रोताओं, 25 मई से ही नवतपा की शुरुआत हो चुकी है और यह 2 जून तक चलेगी। इस दौरान सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं, जिससे भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता है। ज्योतिष और मौसम के हिसाब से ये 9 दिन सबसे ज़्यादा गर्म माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवतपा जितना ही अधिक तपेगा मानसून में, उतनी ही अच्छी बारिश होगी। हालांकि इसके दौरान सूर्य की किरणें सीधी धरती पर पड़ती है, जिससे तापमान 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अतः आजकल दोपहर में निकलने से परहेज करें, खूब पानी पिए और सूती कपड़े पहने जाएं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो इसे लू की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 47 डिग्री से ऊपर के तापमान को भीषण लू की स्थिति कहते हैं। इस समय उत्तर भारत के कई हिस्से इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। हद तो यह है कि इस वर्ष अपना रोहतास और कैमूर जिला भी देश भर में पड़ने वाली सर्वाधिक गर्मी के इलाकों में से दूसरे स्थल पर रहा है और यह स्थिति वाकई चिंताजनक है। लेकिन संतोष की बात यह है कि मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले बृहस्पतिवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इसके असर से हल्की बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे कुछ राहत तो अवश्य मिलेगी, लेकिन जून की शुरुआत में गर्मी फिर तेज हो सकती है और इसके मद्देनजर हमें सावधान रहना चाहिए। इस बीच गर्मी की भयावहता को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य और जल शक्ति मंत्रालय को खास तौर पर मुस्तैद रहने को कहा है, ताकि लू से प्रभावित लोगों को तुरंत इलाज और पानी उपलब्ध कराया जा सके। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आलू के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व फुटबॉल दिवस, विश्व दुग्ध दिवस और विश्व तंबाकू निषेध दिवस की विशद चर्चा करेंगे और साथ ही सुनिएगा इनसे संबंधित बातचीत। लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक के वैज्ञानिकों की चर्चा से। इस अंक के वैज्ञानिक हैं ओमर खय्याम और रॉन तुमर। 31 मई 1048 को जन्मे उमर खय्याम एक प्रसिद्ध फारसी कवि और बहुज्ञ थे, जो गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन और फारसी साहित्य में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। खय्याम ने खगोल शास्त्री के रूप में 100 वर्ष की अवधि की गणना उल्लेखनीय सटीकता के साथ की और जलाली कैलेंडर को डिजाइन किया, जो एक बहुत ही सटीक 33 वर्षीय अंतर्विन्यास वाला सौर कैलेंडर है। गणित के क्षेत्र में उमर खय्याम ने ज्यामिति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। साहित्य के क्षेत्र में उमर खय्याम को चौपाइयां के रूप में लिखी गई कविताएं करने का भी श्रेय दिया जाता है, जिन्हें रुबाइयां कहते हैं। 4 दिसंबर 1131 को उमर खय्याम का निधन हो गया। श्रोताओं, इस अंक के दूसरे वैज्ञानिक हैं 31 मई 1930 को अमेरिका में जन्मे रॉन टुमर, एक प्रसिद्ध रोलर कोस्टर डिजाइनर रहे हैं, जिन्हें दुनिया भर में 93 से अधिक रोलर कोस्टर डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है। दरअसल रोलर कोस्टर मनोरंजन पार्कों में एक लोकप्रिय और रोमांचक सवारी होती है, जो तीखे मोड़ों, खड़ी ढलानों और लूप वाले

0: ऊंचे रेल ट्रैक पर चलती है। यह मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण और गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर कार्य करती है। कहते हैं रोलर कोस्टर की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में रूस में हुई थी। लोग जहां बर्फ की बनी स्लाइड्स को का आनंद लेते थे, एरोडायनेमिक्स के लिए जाने जाने वाले रॉन टोमर ने 26 सितंबर 2011 को अंतिम सांस ली। तो श्रोताओं, यह थी संके वैज्ञानिकों की संक्षिप्त चर्चा। और अब एक नज़र विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरों पर। खबर है कि इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास हमेशा अंधेरे में रहने वाले 4 गड्ढों के नीचे दबी हुई बर्फ के पुख्ता सबूत खोजे हैं, जो धूप और रेडिएशन से सुरक्षित है। सतह के नीचे मौजूद पानी का यह विशाल खजाना भविष्य के मानव मिशनों के लिए पीने के पानी और रॉकेट ईंधन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में गेम चेंजर साबित होगा। उधर नासा से संबंधित एक खबर के मुताबिक नासा के आर्टेमिस 2 चंद्रयान मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए हैं। उनका ओरियन अंतरिक्ष यान, जिसे इंटीग्रिटी नाम दिया गया था, स्वचालित नियंत्रण प्रणाली के तहत प्रशांत महासागर में उतरा और वहीं अपने देश की टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबर कहती है कि अपने देश का एडवांस वेंडर सुपर कंप्यूटर अरुणिका AI और मशीन लर्निंग के जरिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी कर रहा है, जो चक्रवात के ट्रेनिंग में मददगार है एवं देश में स्वदेशी तकनीक पर आधारित पहला आर्टिबल डेटा सेंटर पिक्सेल सर्वम का विकास किया जा रहा है। तो श्रोताओं, यह थी विज्ञान से संबंधित नवीनतम खबरें। और अब बात कर लेते हैं 30 मई यानी कल मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस की। यह दिन वैश्विक खाद्य सुरक्षा, पोषण और गरीबी को कम करने में आलू के महत्व को रेखांकित करने के लिए समर्पित है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है आलू की पोषण क्षमता, सांस्कृतिक महत्व और सतत कृषि में इसके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ज्ञात हो कि आलू दुनिया की तीसरी सबसे अधिक खपत होने वाली खाद्य फसल है, जो करोड़ों लोगों को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और पोटेशियम प्रदान करती है। आलू पोषण से भरपूर है और फाइबर युक्त होने से भोजन के पाचन में मदद करती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिवस छोटे किसानों को भी सम्मानित करता है, जो आलू के विभिन्न किस्मों का संरक्षण करते हैं। श्रोताओं, आज विश्व तंबाकू दिवस है। तंबाकू निषेध दिवस को मनाने का उद्देश्य है तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना, जो वर्तमान समय से दुनिया भर में हर साल 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है और गैर धूम्रपान करने वालों पर भी व्यापक प्रभाव छोड़ता है। तंबाकू सेवन से अनेक बीमारियां होती हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक समस्याएं पैदा होती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सदस्य राज्यों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की। अपने जिले में भी तंबाकू जनित बीमारियों से अनेक लोग पीड़ित हैं, जिनके उपचार के लिए व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। इसे और भी गहनता से समझने के लिए आइए सुनते हैं यह खास बातचीत। श्रोताओं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम बातचीत कर रहे हैं संजय कुमार जी से। संजय कुमार जी एक NGO से जुड़कर जिले में नशा मुक्ति कार्यक्रम से सरोकार रखते हैं। संजय कुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: स्वागत है मैडम, स्वागत है।
0: संजय कुमार जी, हमें लगता है कि तंबाकू के दुष्प्रभावों को लेकर जन जागरण की भी आवश्यकता है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं संजय जी? क्योंकि कहते हैं ना संजय जी कि नशे का जो हुआ शिकार उजड़ा उसका घर परिवार।

0: मैडम देखिए, इसकी मैंने जागरण की तो बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञानतावश लोग इसके शिकार होते हैं। वो
1: जी
0: समझ नहीं पाते हैं कि इसके सेवन से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारा परिवार कैसे इसमें और माने पीछे जा सकता है। इसके लिए जन जागरण के लिए बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सेमिनार और प्रचार प्रसार पोस्टर और बैनर के द्वारा, साथ साथ मैं एक सलाह और देना चाहूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है कि जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल,
1: जी
0: मिडिल स्कूल में ज्यादा से ज्यादा कैंप करने की जरूरत है, स्पीच की जरूरत है, ताकि उनको इसके बारे में बताया जा सके कि तंबाकू हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव करता है। और लगता तो एक छोटा सी चीज, सिगरेट, एक तो सिगरेट पीने से क्या होगा, हुक्का लेने से क्या होगा, बीड़ी पीने से क्या होगा, लेकिन ये शरीर के लिए कितना घातक है ये युवा पीढ़ी नहीं समझ पाती है, और नहीं समझने के कारण ही प्रयोग में ले ले लेते लेते इसकी आदी हो जाती है। तो इसके लिए तो सेमिनार की बहुत ज्यादा जरूरत, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सेमिनार की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: संजय कुमार जी, आपने हमारे कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
1: श्रोताओं, हर वर्ष 25 मई को हम विश्व फुटबॉल दिवस मनाते हैं। यह दिवस खेल के माध्यम से एकता, समावेशन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इस वर्ष 2026 में यह दिवस एक साथ हम अधिक शक्तिशाली हैं थीम के साथ मनाया गया, जो 2026 फीफा वर्ल्ड कप के लिए प्रोत्साहन का कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र ने फुटबॉल की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक भूमिका को मान्यता देते हुए इसे एकता और शांति के जश्न के रूप में घोषित किया है। हमारे देश में फुटबॉल का इतिहास 19वीं सदी के मध्य से शुरू होता है। नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ने हमारे देश में फुटबॉल की नींव रखी, अतः उन्हें भारतीय फुटबॉल का जनक माना जाता है। 1951 से 1962 का दौर भारतीय फुटबॉल का स्वर्ण युग था, जब भारत ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। अपने जिले में भी फुटबॉल काफी लोकप्रिय है। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में पूर्व सचिव रोहतास, जिला फुटबॉल संघ और वरिष्ठ पत्रकार सैयद एनाम अहमद जी से। पूर्व सचिव रोहतास, जिला फुटबॉल संघ, सैयद एनाम अहमद जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सैयद एनाम अहमद जी, विश्व फुटबॉल दिवस के अवसर पर सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि फुटबॉल युवाओं को बार बार क्यों आकर्षित करता है?
2: सवाल यह है देखिए कि युवा पीढ़ी के आकर्षित होने की सबसे बड़ा कारण यह है कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कहीं पर छोटी सी छोटी जगह में कम से कम खर्च पर कम से कम समय में खेला जा सकता है, और आकर्षित होने की यह भी एक वजह है कि ये एक फिजिकल एक्सरसाइज ऐसा है जो सारे ऑर्गन को फिट कर देता है, और युवा पीढ़ी फुटबॉल की तरफ आना चाहिए इनको, इसलिए कि इस खेल से यूनिफॉर्मिटी पैदा होती है, एक एक क्षमता पैदा होती है, जर्सी से आदमी पहचाना जाता है, नाम से इसकी कोई पहचान नहीं होती है, सिर्फ मजहब और सियासत ये सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं, सिर्फ एक पहचान उसकी जर्सी होती है, फलां नंबर होता है, और यही चीज़ सबसे बड़ी होती है जो प्रेम की बुनियाद होती है, जो प्रेम प्रकट करता है। इससे जो खेल प्रेमी हैं, फुटबॉल खेल प्रेमी हैं, उनको भी बहुत उत्सुक रहते हैं, इसलिए कि ये बहुत कम समय में अपना इंटरटेनमेंट कर लेते हैं और बहुत बढ़िया उनको इसमें इंटरटेनमेंट मिल जाता है, और एक फुटबॉल और 22 खेल होते हैं, जबकि दीगर खेलों में बड़े बड़े खर्चे होते हैं, दिन दिन भर लोग बैठे रहते हैं और वो इतना समय नष्ट होता है, एंटरटेनमेंट का भी कोई श्योरिटी नहीं होती है जो कि फुटबॉल से होती है। फुटबॉल एक बहुत ही अच्छा गेम है और युवाओं को इसकी तरफ आकर्षित होना चाहिए।
1: एनाम अहमद जी, रोहतास

0: सासाराम का यह इलाका फुटबॉल के लिए शुरू से ही मशहूर रहा है। इस संदर्भ में अब हम आपसे यह जानने को उत्सुक हैं कि फुटबॉल की दुनिया में अपने इलाके में कितना परिवर्तन आया है।
1: देखिए, यहाँ सन 1937 में मार्टिन कप फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था। उस वक्त का यहाँ SDM मार्टिन रेलवे, उसी के नाम पर यहाँ चलती थी मार्टिन छोटी रेल लाइन जो कहलाती है, और वो मार्टिन साहब जो है यहाँ टूर्नामेंट चलाता था। उसकी एक मिलिट्री की टीम हुआ करती थी और सिविलियंस की टीम होती थी। उसमें कुछ प्लेयर जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे हैं, उनमें आपके इशरत हुसैन, आपके वासिल हुसैन, ये दो नाम बहुत ही उम्दा नाम रहे हैं खेल की दुनिया में। उसके बाद एक पीढ़ी आई जो बनारसी लाल, जगदीश बाबू, मुनीर मियां, ये लोग जो हैं वो सेकंड पीढ़ियां जो आई, ये आई आपके प्री इंडिपेंडेंस डे की आपकी बात करते हैं। 1960 में जब जहां देखा गया तो फुटबॉल करीब करीब ख़त्म के कगार पर था। 67 में एक बार एक आंधी आई यहाँ, 1967 में यहाँ स्पोर्ट्स में एक सासाराम शहर में एक टीम बनी, फुटबॉल टीम जो सासाराम फुटबॉल क्लब के नाम से जाना गया। उसमें यहाँ एक ट्रक यूनियन के एक प्रेसिडेंट थे रविंदर कुमार सिंह, वो यहाँ उसको संचालित करते थे। उसके बाद SP वर्मा, ये लोगों ने यहाँ चलाया, देहरी इलेक्ट्रिसिटी थी। उसके बाद भूषण बाबू एक थे आपके इसके देहरी के BMP के, उनकी एक टीम थी। उसके बाद था आपके डालमिया नगर की टीम थी, डालमिया नगर फैक्ट्री में भी चलता था टूर्नामेंट, देवी दुर्गा टूर्नामेंट चलता था। डेहरी में आपके अंसारी गोल्ड कप चलता था जी। उसके बाद यहाँ चला, तो इस तरह से फुटबॉल यहाँ आया। और जैसे कृष्णा सिंह जैसे प्लेयर को भी यहाँ पैदा हुआ, और वो विमेंस के लिए भी कुछ बहुत अच्छा काम किया कृष्णा सिंह ने। तो इस तरह से जब बढ़ने लगा तो कुछ प्लेयर्स जो थे यहाँ के, जैसे मरहूम आपके उदय प्रताप सिंह, आपके मोहन सिंह, ये सब जो है 60s के बाद के हैं। 70-80 तक इन लोग एग्जिस्टेंस में रहे, वजूद में रहे और अच्छा खेले, एक बढ़िया फुटबॉलर थे ये लोग। आपके बंजारी के जितेंद्र सिंह थे, आपके बंजारी ही के आपके धर्मेंद्र सिंह, ये सारे प्लेयर। 82 में यहाँ श्री BK सहाय एक टीचर थे हाई स्कूल के, वो यहाँ के सेक्रेटरी हुए। उनसे पहले सेक्रेटरी बाबू आशुतोष बहादुर सिंह थे, वो चले। तो यहाँ दो टीमें फिर थी सिर्फ, एक NT स्पोर्ट्स कहलाती थी और एक जो है आपके यही सासाराम स्पोर्ट्स कहलाता था, यही डिस्ट्रिक्ट बन के चली जाती थी, ज़्यादा टीमें नहीं थी। लेकिन 82 में भी वही रहा। 98 में इस ज़िला का की किस्मत बदली, मैं यहाँ का सेक्रेटरी हुआ। और उस वक्त के DM थे आपके श्री अंजुम साहब, और अंजुम साहब के अध्यक्षता में ही ये ज़िला का कंस्टिट्यूट हुआ, एक इलेक्शन पहला हुआ और उसमें मैं विजेता हुआ। और तब हमने यहाँ जो है गठित करना शुरू किया पूरे ज़िला की टीमों को, और 17 टीमें ने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया। और शायद बहुत दिन के बाद यहाँ एक लीग मैच शुरू हुआ। जब फुटबॉल लीग होने लगा तो लोगों की जो है रुचि भी इसमें बढ़ने लगी, युवाओं का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा, और जगह जगह से विक्रमगंज सब डिवीज़न से, डेहरी सब डिवीज़न से, ससराम सब डिवीज़न की टीमों के जब बच्चों ने जब इसमें पार्टिसिपेशन किया, चैम्पियनशिप डिक्लेयर हुई। तो फिर उसके बाद 98 के बाद से फिर SP वर्मा को हम लोगों ने 2016 में, ये जब एक आ गया IAFF IAS और IPS को

अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अब सिविलियन ही कोई होना चाहिए। तो उस समय के हम लोगों ने एसपी वर्मा को पहली इलेक्शन ये लड़े और इनको हम लोगों ने जिताया और इनका आज तक जो है प्रेसिडेंट वही हैं। और इनके इसमें बड़ा बढ़िया से चला, इनका स्कूल भी इसमें शामिल रहा, टूर्नामेंट खेलता रहा और अभी तक जो है स्टेट में कम से कम 18-20 लड़के खेल चुके हैं जिनका कैरियर बना है। विक्रमगंज से दो लड़के इरफान और कमरान, ये लोग पुलिस अफसर हुआ, उसके बाद से मिलिट्री में हुआ आनंद हुआ, अच्छा अभी भी मिलिट्री में हुआ है, नोखा का एक लड़का हुआ है सत्येंद्र सिंह, ये हुआ है और अभी भी बैच जो है एक लड़का जो है वो आपके चेनारी के एक बहुत छोटे से गांव का है और वो जो है अभी पंजाब में, अभी उसको पंजाब ले गई है अपने साथ, वो हमारे रीजन में 23-24 में लीग में यहाँ सेलेक्ट हुआ था बिहार के लिए और ये बिहार खेला भी था, गोलकीपर था, उसका नाम था शारिक बेग। तो शारिक बेग को वहीं पटना में जब इसका गेम देखा पंजाब ने, तो पंजाब ने उसको हायर कर लिया, अब वो पंजाब में इस वक्त है और उसकी सैलरी जो है लाखों में है। तो अचीवमेंट बहुत रहा। अभी जो वर्तमान सेक्रेटरी नौशाद आलम साहब हैं, मैंने भी स्टेट और यूनिवर्सिटी जोनल कैप्टन रहा पटना जोन के यूनिवर्सिटी कॉलेज टीम का, अभी जो वर्तमान है ये स्टेट प्लेयर भी हैं, रिज़र्व बैंक के एम्प्लाई हैं और रिज़र्व बैंक की टीम के ये कोच भी हैं, बिहार के भी कोच हैं और अभी जो है ये करीब करीब 7 लड़के अभी सेलेक्ट हुए हैं सिर्फ इसमें। बिमलेश सिंह एक शिवसागर के रायपुर चोर भट्टी रायपुर चोर क्लब है उसी के वो सेक्रेटरी, वो हमारे साथ थे, मैं बहुत आज भी उनको याद करता हूँ। हमारे साथ और भी लोग थे, बिमल सिंह, इसमें छेदी पासवान को भी भूला नहीं जा सकता है। छेदी पासवान जब यहाँ थे तो उनके रिजिम में देखिए रेलवे मैदान में गैलरी वगैरह बनी थी, एक स्टेडियम का उन्होंने ये किया था। उन्होंने कहा इनाम भाई ये बताओ क्या यहाँ स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि वो भी एक फुटबॉलर थे और तकिया फुटबॉल जब था श्री शंकर फुटबॉल क्लब तकिया, तो उसमें वो और उनके बड़े भाई ये दोनों माने बैक से खेलते थे और बड़े अच्छे प्लेयर थे, यहाँ के एसपी जैन कॉलेज से भी खेलते थे, तो उनसे हमारी बनती थी, उनको खिलाया है हमने, छेदी पासवान को हमने खिलाया है। तो छेदी पासवान जी ने कहा हमसे कि क्या है ना भाई बताइए क्या किया जाए, हमने कहा कि कुछ कर दीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आप। तो उन्होंने अपना जो है ये स्टेडियम के लिए पैसा ग्रांट किया और उसमें जो है गैलरी वगैरह बनवाई और संरक्षक भी हमारे ज़िला के वो रहे, यह उनकी देन थी जो यहाँ 3-4 सालों तक आपके एकलव्य जो सरकारी ये थी वो चला। जब यहाँ रोहतास ज़िला एक माने ऊंचाई पर बहुत था, भाभुआ में उस वक़्त मोइनुल हक यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस जो था आपके टूर्नामेंट वो हो रहा था, उस वक़्त की टीम जो थी धर्मेंद्र उसका कैप्टन था और बड़ी मजबूत टीम थी, सुनील पांडे था, ये सारे हमारे पास स्टार प्लेयर्स थे और हम लोगों ने इसको चलाया और ले गए तो हम लोगों ने फर्स्ट मैच 5 गोल से जीता। और ससाराम में 2024 में एक सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो होता है इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट वो यहाँ स्पॉन्सर हुआ, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने, रोहतास ज़िला फुटबॉल एसोसिएशन ने उसको स्पॉन्सर किया। इसमें 4 टीमों ने भाग लिया था, आरा डिस्ट्रिक्ट, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, अरवल और रोहतास, जिसमें ये जोनल चैम्पियन हुआ और चैम्पियन होने के बाद रोहतास ज़िला आपका बेगूसराय में इसका मैच हुआ जो क्वार्टर फाइनल में रोहतास ज़िला वहाँ माने पराजित हुआ। ये इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। 1982 में एक बार सेमीफाइनल में ये माने पहुँचा और

0: तीसरी बार 24 में ये माने क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है, तो ये बहुत बड़ी बात है पहली बार। और इसी में आपके जो है तीन प्लेयर चार प्लेयर जो है बिहार के लिए चुने भी गए थे।
1: पूर्व सचिव रोहतास जिला फुटबॉल संघ सैयद इनाम अहमद जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, संगीतमय वातावरण का प्रभाव इंसानों को तरोताजा करता है। संगीत सुनकर व्यक्ति नई ऊर्जा से भरता है और प्रसन्नता से भरकर अपने कार्यकलाप में रुचि लेना शुरू करता है। संगीत के प्रभाव से मनुष्यों में भावनाएं, यादें और शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे रक्तचाप एवं तनाव इत्यादि नियंत्रित हो जाती है। इतना ही नहीं, संगीत से हमारे पालतू पशु भी सकारात्मक प्रभाव दर्शाने लगते हैं। संगीत की लय और ध्वनि तरंगों से गाय और बछड़े तो अद्भुत रूप से प्रभावित होते हैं। तो सुनते रहिए संगीतों की सुरलहरियाँ और बने रहिए स्वस्थ, रहिए प्रसन्न, रहिए। श्रोताओं, आपको हमारा आज का यह अंक कैसा लगा अवश्य लिख भेजिएगा। फिलहाल आज के इस अंक से अर्चना लेती है विदा। नमस्कार। स्वर संकलन अर्चना कुमारी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
1: यह था हमारा साप्ताहिक प्रसारण विज्ञान एवं पर्यावरण। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से प्रसारित किया गया।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजे हैं, आइए सुन लेते हैं एक लोकगीत।

तो श्रोताओं, अभी आपने विंध्यवासिनी देवी की आवाज़ में यह रचना सुनी और इसी के साथ ही लोकगीतों का हमारा यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथ अपन विचार साझा कैले। मन की बात कार्यक्रम के 134वीं कड़ी रहे। प्रधानमंत्री देशवासी लोगन से दिनन के भीषण गर्मी के देखत बहुत ज्यादे सावधानी बरते आ सरकारी गाइडलाइंस के पालन करे के अपील कैले बाड़न। उ लोगन के भरपूर पानी पिए आ धूप से बचाव के उपाय कैला के बाद ही घर से बाहर निकले के सलाह देले। प्रधानमंत्री कहले कि गर्मी से राहत पावे खातिर आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सातू, शरबत, बेलपन्ना, पनाकम, नीरमोर, संभारम, कोकम शरबत आ सोल कढ़ी के सेवन कैल बहुते फायदेमंद बा। वो कहले कि इस सब पेय पदार्थ एक भारत श्रेष्ठ भारत के भावना के देखावेला आ एमे पीढ़ियन के अनुभव छुपल बा। प्रधानमंत्री कहले कि सरकार देश के अनमोल धरोहर के बचावे खातिर लगातार कोशिश कर रहल बा। वो बतावले कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में छठी शताब्दी के पांडु वंश के महर्षि बलार्जुन से जुड़ल दुर्लभ तांबा के 3 गो प्लेट भी मिलल बा। प्रधानमंत्री झारखंड के रांची में भइल राष्ट्रीय वरिष्ठ एथलेटिक्स महासंघ प्रतियोगिता के भी चर्चा कैले। एमे करीब 800 एथलेटिक लोग हिस्सा ले हले रन। श्री मोदी 4 गो राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े खातिर गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीना आ कुलदीप कुमार के बधाई देले। उ 100 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड बनावे वाला गुरिंदर वीर सिंह आ अनिमेश कुजूर से बातचीत भी कैले। प्रधानमंत्री मोदी कहले कि खगोल विज्ञान देश के हर पीढ़ी में उत्सुकता जगैले बा। वो कहले कि खगोल विज्ञान अब देश में बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहल बा। श्री मोदी नौजवानन से खगोल विज्ञान क्लब में शामिल होके आ छुट्टी के दिनन में तारामंडल घूमे के अपील भी कैले। प्रधानमंत्री बतौले कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनावल गई भारत के पहली गंगा डॉल्फिन बचाव के तहत एम्बुलेंस एकरा में बहुते बड़ भूमिका निभेले बा। श्री मोदी कहले कि गंगा डॉल्फिन के संरक्षण से नदी के जैव विविधता आ अनमोल प्राकृतिक धरोहर के बचाव भी होला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम के सुनले आ कार्यक्रम में खास तौर पे बिहार के चर्चा कैल खातिर प्रधानमंत्री के आभार जतौले। मुख्यमंत्री कहले कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचे खातिर बिहार के पारंपरिक पेय सातू आ प्रसिद्ध जरदालू आम के नाम लिहल राज्य के खास पहचान के देश स्तर पर देखावेला। श्री चौधरी कहले कि प्रधानमंत्री जी के तरफ से बिहार के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोकल प्रोडक्ट आ जनजीवन से जुड़ल चीजन के चर्चा कैल राज्य के लोगन खातिर गर्व आ सम्मान के बात बा। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन आज 27वां नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाले। वो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह ले बाड़न। कार्यभार संभारे के बाद श्री स्वामीनाथन कहले कि चुनौती, कड़ाई आ अनिश्चितता से भरल माहौल के देखत नौसेना एकदम मुस्तैद बा। वो कहले कि नौसेना के आधुनिकरण कैल जा रहल बा आ एकरा के सबसे बेहतरीन युद्ध क्षमता से लैस भी कैल जाई। पूरा प्रदेश में पिछला 24 घंटा के दौरान मौसम एकदम सूखा बनल रहल। ए दौरान 37.1 डिग्री सेल्सियस सबसे ज्यादा तापमान के साथ कैमूर के भभुआ प्रदेश के सबसे गर्म इलाका रहल। मौसम विभाग अगले 24 घंटा के भीतर प्रदेश के उत्तर पूर्व हिसाब के कुछ जगहन पे पानी गिरे के संभावना जतैले बा। भोजपुर जिला में साइबर थाना पुलिस साइबर फ्रॉड करे वाला 9 लोगन के धर दबोच ले बा। इन्हन पे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़न रुपया के ठगी करे के आरोप बा। रोहतास जिला के 6ठी बिहार राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भाग लेवे खातिर जिला के 10 सदस्यीय टीम इतवार के सासाराम से मोतिहारी रवाना भइल। प्रतियोगिता 2 दिन तक पूर्वी चंपारण में आयोजित हुई। संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों ने टीम के बेहतर प्रदर्शन के खातिर शुभकामना दिलास। आईपीएल 2026 के खिताबी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेल जाई। फाइनल मैच में पिछला बेर के विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के सामना गुजरात टाइटन्स से हुई। दोनों टीम पूरा टूर्नामेंट में गजब के खेल दिखावत फाइनल में जगह बनाई ले लिया। ये महामुकाबला आज सांझ के 7:30 बजे से शुरू हुई। एक साथ ही आकाशवाणी पटना ले प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भेल।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर।

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचों भाई के प्रणाम। श्रोता सभे कार्यक्रम शुरू करे से पहले जान लिहल जाओ कि आज

गांव घर कार्यक्रम के सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचों भाई के प्रणाम। श्रोता सभी, कार्यक्रम शुरू करे से पहले जान लिहल जाओ कि आज हमने के इसमें का जानकारी मिले वाला बा। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो चर्चा में आज के विषय रही तंबाकू सेवन से हानि। कार्यक्रम में आज मन मनसाइन खातिर गीत गौनाई के आनंद लिहल जाई टुकू पाठक से। वार्ता में आज बतकही के विषय रही नशा के बढ़त प्रवृत्ति आ ओह से होखे वाला हानि। वार्ताकार रहन ददन पांडे। एक जानकारी में बतियावल जाई बढ़त गर्मी आ ओमे हमनी के दायित्व विषय पर। अंत में जानकारी लिहल जाई मौसम के पूर्वानुमान के आ कुछ कृषि सलाह। लेकिन पहले बतियावल जाओ समसामयिक विषयन पर। देखी रोहिणी नक्षत्र चढ़ गेल बा आ ओकरा तहत नवतपा चल रहल बा, यानि भयंकर गर्मी के समय। यह 9 दिन में तापमान बहुत ज़्यादा रहेला, जौना से हमनी के खेत में कृषि खातिर या फसलन खातिर नुकसान करे वाला कीड़ा जौन बन वो एह गर्मी से मरेलन। लेकिन 2 दिन पहले तेज आंधी आ बारिश यह चक्र के प्रभावित कैले बा, तो एकरा चलते हमने के जौन समय बा या तापमान बा मौसम के अनुरूप रहत नहीं है, आगे पीछे हो जाता। यही से हमने के मौसम आधारित खेती करे के सलाह दिया जाता। आ रोहिणी नक्षत्र तो पारंपरिक कृषि में धान के खेती खातिर शुभ मानले जाला। इस समय किसान भाई बहन लोग धान के नर्सरी आ मुख्य खेत के तैयारी पर विशेष ध्यान देवेलन। हमनी के भी इस समय अपना खेत के सफाई, खेत से खर पतवार झाड़ी आ फसल अवशेष हटा देवे के चाही। जल निकासी के व्यवस्था ठीक से रखे के चाही। फसल अवशेष ऐसे भी हटा देवे के चाही कि ओकरा नीचे कुछ कीड़ा पड़ल रहेलन, जवन कि धूप ना पड़े उनका पर आ उ नष्ट ना हो खस, तो ऐसे भी हटा देवे के चाही। खेत के तैयारी करे खातिर 2 से 3 बार जोताई करके मिट्टी के एकदम भुरभुरा बना देवे के चाही। आ अंतिम जुताई के समय माटी संगे गोबर के सरल खाद या कंपोस्ट डाल दी। एकरा अलावे धान के खेती के तैयारी करे वाला किसान भाई बहन लोग के प्रमाणित आ उच्च गुणवत्ता वाला धान के बीज के चयन करे के चाही। देखा देखी ना बल्कि अपना क्षेत्र के अनुसार उपयुक्त किस्म चुने के चाही, जैसे संकर या उन्नत प्रजाति। ए बारे में हमनी के क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र से मदद मिल सकेला, कृषि विज्ञानी लोग बता सकेला। बीज के फफूंदनाशी आ जैविक उपचार ट्राइकोडर्मा आदि से करे के चाही, ऐसे रोग के खतरा कम रहेला। ऊंचा आ समतल जगह पर नर्सरी तैयार करे के चाही। नर्सरी में पर्याप्त नमी बनल रहे के चाही, काहे कि घड़ी गर्मी के समय बा। आ नर्सरी में सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग जरूर करे के चाही, ऐसे मिट्टी में नमी ज़्यादा देर तक रहेला। जहाँ तक खाद आ उर्वरक प्रबंधन के बात बा, तो माटी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरक के प्रयोग करे के चाही। नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटास के संतुलित उपयोग जरूर करी। आ बरखा से पहले खेत के मेड़ के मजबूत कर लेवे के चाही, ताकि पानी रुके के उचित व्यवस्था बनल रहे।

हमनी के एक बात और ध्यान देवे के चाहिए रोहतास कैमूर के क्षेत्र में कि मानसून आवे से पहले नर्सरी के तैयारी पूरा कर लेवे के चाहिए। यदि वर्षा समय पर हो जाए तो जून के दूसरा तीसरा सप्ताह में, काल से जून चढ़ता, बिचड़ा डालल लाभदायक मानल जाला। धान के किस्म के चयन अवधि आ पानी के उपलब्धता के अनुसार ही करे के चाहिए। तो इस सब बात कही हमनी के देखी आगे भी होत रही, लेकिन अभी हमनी के बतियावल जाइए, जैसे कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, तो तंबाकू सेवन से होखे वाला हानि के बारे में श्रोता सभे विषय खाली स्वास्थ्य खातिर ही ना, बल्कि हमनी के परिवार, समाज और राष्ट्र के भविष्य से जुड़ल बा। राष्ट्र के भविष्य से ऐसे जुड़ल बा कि तंबाकू एगो ऐसा नशा है जवन धीरे धीरे मनुष्य के शरीर के अंदर से खोखला कर देवेला। लोग एकरा के सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, खैनी, जर्दा आ पान मसाला के अलावे हुक्का के रूप में भी सेवन करेलन। शुरुआत में एगो सामान्य आदत लागेला, लेकिन धीरे धीरे ई ऐसन लत बन जाला जौना से छुटकारा पावल काफ़ी कठिन हो जाला। तंबाकू में निकोटिन आ अनेक तरह के हानिकारक रसायन पावल जाला जवन की शरीर के विभिन्न अंगन के नुकसान पहुँचावेला। एकरा सेवन से मुंह, गला आ फेफड़ा के कैंसर होखे के खतरा बढ़ जाला। अतने ना, एकरा अलावा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक आ सांस से संबंधित गंभीर बीमारी भी हो सकेला। देखले हो खब जा, तंबाकू सेवन करे वाला लोग के दांत आ मसूड़ा भी खराब हो जाला आ उनका मुंह से दुर्गंध आवे लागेला। इस तरह से तंबाकू के दुष्प्रभाव खाली सेवन करे वाला व्यक्ति तक सीमित नहीं रहत। धूम्रपान करे वाला व्यक्ति के आसपास मौजूद लोग भी एकरा धुआं से प्रभावित होखेलन। बच्चा, गर्भवती महिला आ बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से एकर बुरा असर पड़ेला। तंबाकू आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। श्रोता सभे जे एकर सेवन करता उ लोग अपना मेहनत के कमाई के एगो बढ़हन हिस्सा ए नशा पर खर्च कर देवेलन। एकरा चलते परिवार के आर्थिक स्थिति प्रभावित होला। कई बार तंबाकू से होखे वाला बीमारी के इलाज में भी भारी खर्च उठावे के पड़ेला। तो तंबाकू से होखे वाला अधिकांश बीमारी के खाली एगुड़े निर्णय लेके रोकल जा सकेला आ उ निर्णय है तंबाकू के पूर्ण त्याग। हमनी के स्वयं ए बुरा आदत से दूर रहे के चाही आ अपना परिवार, मित्र आ समाज के भी एकरा दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करे के चाही। काहे कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन आ स्वस्थ समाज ही राष्ट्र के सबसे बड़ पूंजी है। तो देखी हमनी के ई तो रहल बत कही विश्व तंबाकू निरोध निषेध दिवस पर। अब कुछ मन मनसाइन कार्यक्रम में कर लिया जाओ आ सुनल जाओ एगो पूर्वी टुकू पाठक से। आई सुनल जाओ।

श्रोता सभे टुकु पाठक के गीत निक नाही लागेला घरवा कतना बढ़िया लागल सुन के मन मनसाइन हो गई आ बड़ा मिजाज हरियर भइल। तो इनका के गीत खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। अब आई विश्व तंबाकू निषेध है तो एगो वार्ता सुनल जाओ। नशा के बढ़त प्रवृत्ति ऐसे होखे वाला हानि विषय पर वार्ताकार बड़न ददन पांडे।

0: आई सुन लो।
1: नशा मानव शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है, लेकिन कोई भी नशीला पदार्थ जब किसी व्यक्ति के जीवन में आदत के रूप में प्रवेश करता है, तब व्यक्ति उस नशीले पदार्थ का गुलाम हो जाता है। उसे नशा करने की लत लग जाती है और फिर वह व्यक्ति नशा पान किए बिना नहीं रह सकता। यह एक बात हुई, लेकिन दूसरी बात यह है कि नशा पान करने का शिकार व्यक्ति नशीले पदार्थ की मात्रा लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे उसके शरीर की तंत्रिका प्रभावित होती है और मानव स्वास्थ्य चौपट हो जाता है। नशीले पदार्थ के सेवन से जहां मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहीं वह आर्थिक रूप से भी काफ़ी खर्चीला होता है। लेकिन आदत से लाचार होकर व्यक्ति कोई भी उपाय करके नशीले पदार्थ को प्राप्त करता है। समाज में नशा पान को अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी नशा में डूबा कोई व्यक्ति अन्य बात सोच नहीं पाता और वह हर हाल में नशा पान करना चाहता है। नशा के चक्कर में कई परिवार उजड़ जाते हैं और आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। नशीले पदार्थों में शराब, गांजा, भांग, अफीम, हेरोइन, कोकीन जैसे पदार्थ शामिल हैं। नशीले पदार्थों के व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता है। यह कारोबार पूरी तरह अवैध है, किंतु अत्यधिक मुनाफा के कारण यह धंधा बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक साजिश के तहत इस धंधे में शामिल व्यक्तियों द्वारा किशोर बच्चों को नशा पान कराकर इस जाल में फंसाया गया और धीरे धीरे इस जाल में बड़ी संख्या में लोग आते गए और नशा के कारोबार का दायरा बढ़ता गया। नशीले पदार्थ की तस्करी और व्यापार को रोकना आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्या है। इसके लिए सरकारों ने अनेक उपाय किए, किंतु इसमें सफलता नहीं मिल सकी है। कुछ नशीले पदार्थ जैसे शराब, गांजा, भांग आदि मानव शरीर के लिए कम खतरनाक हैं और उसे सीमित मात्रा में लेने से अधिक हानि नहीं होती, इसीलिए इन पदार्थों की बिक्री सरकार भी कराती है और इसका लाइसेंस देती है। इससे सरकार को अच्छी आमदनी भी होती है, लेकिन शराब ने भी अनेक परिवारों को उजाड़ा है और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा है। इससे आजीज महिलाओं ने कई बार गाँव में शराबबंदी आंदोलन भी चलाया और सफलता भी हासिल की। लाइसेंस के अतिरिक्त गांव देहात में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने का धंधा होता है। इसी से कई बार जहरीली शराब के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावे हेरोइन और कोकीन जैसे पदार्थों की बिक्री और सेवन दोनों पर पूर्णतः रोक है, फिर भी इसका अवैध कारोबार बड़े पैमाने पर जारी है। इन नशीले पदार्थों के व्यापार संचालन में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े माफिया लगे हुए हैं और उन्हें कई बड़े लोगों का संरक्षण प्राप्त है। इस वजह यह धंधा बड़े पैमाने पर फल फूल रहा है। काफ़ी मुनाफा होने के कारण इस अवैध धंधे में अनेक सफ़ेदपोश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं, जिनके बल पर यह कारोबार फल फूल रहा है और नई पीढ़ी को अपाहिज बनाने का कार्य चल रहा है। कम उम्र के लड़कों को इस कारोबार में आसानी से फंसाया जा सकता है और इसी का लाभ उठाकर इसके कारोबारी अपने धंधे को आगे बढ़ा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने कड़े नियम बना रखे हैं, लेकिन इस धंधे पर रोक लगाना अब तक संभव नहीं हो सका है। इस पर रोक लगाने के लिए जनता में जागृति आवश्यक है और नशा के खिलाफ एक जन आंदोलन चलाना होगा। नशे की लत में डूब चुके लोगों की समस्या बीमारी जैसी है, उसे छोड़ने का उपाय इलाज ही है।

0: बिना इलाज कोई व्यक्ति नशापान से मुक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि नशा से उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव हो जाता है कि उसके बिना वह व्यक्ति सहज नहीं रह सकता। नशा का शिकार व्यक्ति नशा के अभाव में असामान्य हो जाता है और असहज व्यवहार करने लगता है। उसकी चैन समाप्त हो जाती है, उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती। ऐसी स्थिति में नशा पान की आदत वह धीरे धीरे ही छोड़ सकता है और बिना इलाज वह नशा मुक्त नहीं हो सकता। चिकित्सक दवा के द्वारा नशा पान छुड़ाने का कार्य करते हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी नशा के शिकार लोगों को नशा छुड़ाने के लिए अस्पताल चलाती हैं और उन्हें नशा छुड़ाने में सहायता करते हैं। नशा पान रोकने के सरकारी प्रयास अब तक नाकाफी रहे हैं। नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री में लगे अनेक लोग कानून के हवाले किए गए हैं, उन्हें सजा भी हुई है। कानून की सीमा में प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं उसमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। इस अवैध धंधे में शामिल लोग कानून के पेंच का लाभ उठाकर बचते भी रहे हैं। कानून के भरोसे इस बड़ी समस्या पर काबू पाना संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक स्तर पर प्रयास करना होगा, तभी नशा में डूबे व्यक्ति को इससे निकाला जा सकता है और नई पीढ़ी को इसमें डूबने से रोका जा सकता है। नशा के प्रभाव से युवा पीढ़ी अपाहिज हो रही है, यह भविष्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। क्योंकि नशा की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है, इस वजह इस पर रोक लगाना अत्यंत जरूरी है। इसके अलावे पान, मसाला, तंबाकू और सिगरेट भी नशीले पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हैं। इन पदार्थों के सेवन से कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए सामाजिक रूप से लोगों को सचेत करने और इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है।
1: देखिए श्रोता सभे, नशा के बढ़त प्रवृत्ति और उसे होखे वाला हानि, ये विषय पर ददन पांडे कितना उपयोगी जानकारी दिलन, ये जानकारी खातिर इनका के बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ल जाओ, ओसे पहले सुन जाओ कुछ संदेश।
2: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
3: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
2: अब घर, दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
3: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता असुलभ।
2: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700001-4242 पर।
3: जी हाँ, नंबर बा 8700001-4242।
1: श्रोता सभे, एगो और बड़ा ज्वलंत मुद्दा बा, हर साल बढ़त गर्मी। आहे गर्मी के प्रति हमनी के का दायित्व बा, आज के बत कही हमनी के यही विषय पर बा। काहे कि वर्तमान समय में बढ़त गर्मी पूरा दुनिया खातिर एगो गंभीर चिंता के विषय बन गेल बा। हर वर्ष तापमान के नया रिकॉर्ड बन रहल बा। गर्मी के मौसम पहले के अपेक्षा अधिक लंबा समय तक आ अधिक तेज होत जाता। एकर प्रभाव मानव जीवन, कृषि, पशु पक्षी आ पर्यावरण पर स्पष्ट रूप से दिख रहल बा। बढ़त गर्मी के प्रमुख कारण बा

पर्यावरण असंतुलन। लगातार वन के कटाई हो रहल बा, प्रदूषण बढ़ते जा रहल बा, औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग आ प्राकृतिक संसाधन के अंधाधुंध दोहन से धरती के जौन तापमान बा उ बढ़ रहल बा। एकर परिणाम का होता? एकर परिणाम जलवायु परिवर्तन के समस्या बा। गर्मी बढ़े से लू लगता, निर्जलीकरण, थकावट आ विभिन्न तरह के बीमारी के खतरा बढ़ जाला। जल स्रोत सूखे लागेलन, खेती प्रभावित होला आ पशु पक्षी के भी भारी कठिनाई के सामना करे के पड़ेला। कई क्षेत्र में पेयजल संकट उत्पन्न हो जाला। तो ऐसन स्थिति में हमनी के दायित्व और बढ़ जाला। ऐसे बचे खातिर हमनी के अधिक से अधिक पेड़ लगावे के चाही आ जवन पौधा लगावल गइल बा ओकर देखभाल भी करे के चाही। काहे कि गर्मी के कम करे खातिर पेड़ के उपयोगिता तो सभे जानता। कहीं जाता नहीं, रास्ता में एकदम निर्जन होखे, लू चलत होखे, ओइजा कहीं पेड़ पौधा ना होखे तो कैसन लागेला। ओहे कहीं अगर रास्ता में बगीचा मिल गइल, बगीचा के पास कुआं मिल गइल जहाँ पानी पिए के व्यवस्था होके चापा कर होके तो कितना अच्छा लागेला। हमनी के जल संरक्षण के अपन आदत बना लेवे के चाही। अनावश्यक रूप से बिजली आ ईंधन के उपयोग भी कम करे के चाही आ पर्यावरण के प्रदूषित करे वाला जौन गतिविधि बा ओ से भी बचे के चाही। हमनी के अपना स्वास्थ्य के भी विशेष ध्यान रखे के चाही। पर्याप्त पानी पिए के चाही, हल्का आ पौष्टिक भोजन ए समय में करे के चाही। दोपहर के जौन तेज धूप बा ओकरा से बचे के चाही आ एकरा अलावे जौन जरूरतमंद लोग बा चाहे पशु पक्षी बन उनका खातिर भी पानी के व्यवस्था कइल हमनी के सामाजिक दायित्व बा। तो अगर हमनी के आज पर्यावरण के रक्षा खातिर गंभीर प्रयास ना कइल जाई तो आवे वाला पीढ़ी के और भी कठिन परिस्थिति के सामना करे के पड़ी। ऐसे हमनी के संकल्प लेवे के चाही कि प्रकृति के संरक्षण में अपन सक्रिय योगदान दिहल जाई आ दूसरा लोग खातिर भी के भी प्रेरित कइल जाई। तो ई सब रहल हमनी के आज के जानकारी आ अब कुछ सलाह बा कि देर से बोल गइल मूंग आ उड़द के फसल में हेरी कैटर पीलर के प्रकोप के नियमित निगरानी करे के चाही। प्रकोप अगर दिखाई दे तो मिथाइल पैराथियान 50 EC 20 ml पानी के छिड़काव करे के चाही। आ आज के मौसम के जायजा लिहल जाओ तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मेघ गर्जन, वज्रपात आ 50 से 60 km/h के रफ्तार से तेज हवा चल सकेला। हल्का वर्षा के भी संभावना बा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस आ न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रही। तो हमनी के साथ आज के कार्यक्रम के समय और आ गेल। प्रस्तुत करता रहन संतोष कुमार। तो चलत चलत ले सभी श्रोता भाई बहन लोग के पंचू भाई के राम राम।

यह था ग्रामीण श्रोताओं का प्रसारण गांव घर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। सांझ की

अभी आपने महेंद्र कपूर और कल्पना की आवाज़ों में बलमा बड़ा नादान फिल्म का गीत सुना, और अब आइए सुन लेते हैं आशा भोसले के साथ आनंद कुमार को, फिल्म है अमर सुहागन।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से भोजपुरी फिल्म संगीत कार्यक्रम सांझ गीत। उषा मंगेशकर की आवाज में आइए सुन लेते हैं लक्ष्मण शाहवादी का लिखा एक नगमा, जिसकी धुन तैयार की है चित्रगुप्त ने। फिल्म है गंगा किनारे मोरा गांव।

परिवार, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत आइए सुन लेते हैं, इंदु सोनाली और दिनेश लाल यादव के युगल स्वरों में। शब्दकार है विनय बिहारी, धुन तैयार की है राजेश रजनीश ने।

धरती कहे पुकार के। आइए सुनते हैं इस फिल्म में धनंजय कुमार और राहुल सक्सेना के साथ अनुराधा पौडवाल को। गीत लिखा है विनय बिहारी ने, धुन तैयार की है धनंजय मिश्रा ने।

धरती कहे पुकार के, अभी आपने इस फिल्म का यह नगमा सुना और इसी गीत के साथ ही आज का सांझ गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम के साथ मैं हूं संजय चतुर्वेदी। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, पिछले दिनों रोहतास जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, रोहतास सह माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विभागवार समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त रोहतास के द्वारा DRDA सभागार में उपस्थित सभी माननीय को पौधे लगे गमले भेंट करते हुए स्वागत किया गया तथा सभागार में उपस्थित सभी माननीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन सदस्यों के समस्याओं से अवगत होते हुए बैठक की कार्यवाही विभागवार शुरू की गई। उनके समस्याओं से अवगत होने के पश्चात विभागवार दिशा निर्देश दिए गए। जैसे स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं, साथ ही स्वयं नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए और लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित ऑपरेटरों एवं कर्मियों का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जाए। माननीय के द्वारा आयुष्मान कार्ड से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के क्रम में सिविल सर्जन के द्वारा परीक्षा क्रम में बताया गया कि जिले में 3,66,326 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 54% लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। निर्देश दिया गया कि इसकी प्रचार प्रसार कराते हुए जल्द से जल्द संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा सहयोग शिविर में पंचायत स्तर पर इसकी अलग से काउंटर लगाकर आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्या का निदान कराना सुनिश्चित किया जाए एवं नए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। जिन जिन प्रखंडों में अभी तक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन का निर्माण कार्य अधूरे हैं, उन्हें जल्द से जल्द मरम्मतीकरण कर स्वास्थ्य भवन में चिकित्सीय कार्य प्रारंभ किया जाए। माननीय अध्यक्ष के द्वारा निर्देश दिया गया कि जिले में आयुष्मान कार्ड से इलाजरत अस्पतालों की संख्या की बढ़ोतरी की जाए। जिला पदाधिकारी रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक डेहरी को निर्देश दिया गया कि जिले में आए दिन हो रहे साइबर क्राइम को तत्काल रोकने की जरूरत है, महिला एवं बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है तथा उनसे संबंधित केस की जाँच कर न्यायोचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पॉस्को के दोषियों के विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ज़िले में CCTV कैमरा की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हो क्राइम शीघ्रता से कार्रवाई किया जा सके। डायल 112 में कार्यरत वैसे पुलिसकर्मी को लगाने की आवश्यकता है जो ट्रेंड एवं अनुभवी हों, और ऐसे लोगों की प्रतिनियुक्ति कर डायल 112 प्रचार प्रसार कराना आवश्यक है ताकि इसके प्रयोग से समय पर लोगों को मदद पहुंचाया जा सकता है। लघु जल संसाधन विभाग को हर खेत पानी योजना के तहत आहार पैन एवं नहरों की सफाई युद्ध स्तर पर कराने का निर्देश दिया गया ताकि धान रोपाई के समय किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। नल जल योजना एवं पेयजल समस्याओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है, विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट के समाधान हेतु जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं कैमूर से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले दिनों जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के

सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुन लेते हैं एक नगमा।

0: बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी हाँ, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और इसी संदेश और गीत के साथ ही गुड इवनिंग रोहतास से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: दादी, कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन। बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले, तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर सूर्य घर।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
9: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
8: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
3: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने आज 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। मन की बात कार्यक्रम की यह 134वीं कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि

0: सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है।
1: किन्यान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमूर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की अपील की है।
1: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
0: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फाजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
1: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
1: साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में विशेष तौर पर बिहार का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बिहार के पारंपरिक पेय सत्तू तथा प्रसिद्ध जरदालू आम का उल्लेख करना राज्य की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करता है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों और जनजीवन से जुड़े विषयों का उल्लेख राज्यवासियों के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। इधर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में मन की बात कार्यक्रम को सुना। श्री सिन्हा ने इस कार्यक्रम को देशवासियों के लिए प्रेरणादायक बताया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी का मन की बात के अंदर लोगों के प्रेरणा देने का, खेल से खिलाड़ी, खेत से खलिहान, स्वच्छता और राष्ट्र गौरव के सारे विषय पर इन्होंने बताए हैं, लोगों को प्रेरणा मिलता है। सभी युवा जो नए आदर्श बेस्ट प्रैक्टिस की चर्चा होती है, इससे हमारे लोगों का मनोबल बढ़ता है, राष्ट्र प्रथम का भाव जगता है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विधान पार्षद अरविंद शर्मा समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेयरी, पशुपालन और मत्स्य मंत्री नंदकिशोर राम ने पश्चिम चंपारण के रामनगर में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने वाल्मीकि नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ इस कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भागलपुर में 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों के

0: प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही विक्रमशिला सेतु पर आवागमन शुरू कर दिया जाएगा।
1: नवंबर को मैं स्वयं आऊंगा और स्कूल को फिर से चालू करूंगा। अभी टेम्पररी चालू हो, और दूसरा जब तक ये पुल चालू नहीं हो तो प्राइवेट गाड़ी हो या आम लोग हो उसको मुफ्त में इस तरफ से उस तरफ ले जाने की सारी व्यवस्था सरकार के।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी योगेश कुमार सागर और अभिलाषा कुमारी शर्मा के निलंबन के बाद बिहार के प्रशासनिक हलकों में हाई प्रोफाइल ठेकेदार ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषु श्री के कारनामों की चर्चा तेज हो गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि सरकार में बैठे शीर्ष अफसरों के साथ ऋषु श्री का नजदीकी रिश्ता था। अधिकारियों से अच्छे संबंध का लाभ लेकर करोड़ों के सरकारी टेंडरों अपनी मर्जी से चहेतों को फायदा पहुंचाता था। जांच एजेंसियों ने ऋषु श्री पर शिकंजा कसा तो मामला सामने आया। गौरतलब है कि योगेश कुमार सागर 2017 बैच के और अभिलाषा कुमारी शर्मा 2014 बैच की बिहार कैडर की IAS हैं। श्री सागर उत्तर प्रदेश के बरेली और अभिलाषा कुमारी शर्मा बिहार के नवादा जिले की रहने वाली हैं। दोनों अधिकारी बिहार सरकार में शीर्ष पदों पर कार्य कर चुके हैं। सरकार ठेकों में हेराफेरी के मामलों में इससे पहले जांच एजेंसियों ने IAS संजीव हंस, बिहार प्रशासनिक सेवा के मुमुक्षु चौधरी, भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में दो IAS अधिकारियों का निलंबन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत की गई यह बड़ी कार्रवाई है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। यह दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। इधर विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भागलपुर में भाजपा द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इस अवसर पर भागलपुर विधायक रोहित पांडे, पीरपैंती विधायक मुरारी पासवान, विधान पार्षद लालमोहन गुप्ता और डॉक्टर एनके यादव सहित पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। अररिया जिले में पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग क्षेत्रों से 900 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ 41 लोगों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिले में साइबर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऑनलाइन गेमिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। शेखपुरा जिला में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आज जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा न्यायालय परिसर में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला जज संतोष कुमार तिवारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। शेखपुरा जिला के करंडे थाना पुलिस ने एक गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस और 2 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर रंगदारी मांगने और मारपीट करने समेत कई अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। प्रदेश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं 37.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश

0: के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है।
1: दिनांक 1 जून उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन वज्रपात की संभावना है। अगले तीन दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के अधिकतम तापमान में 4 से 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान राज्य के अनेक भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।
0: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधान परिषद चुनावों में एनडीए सभी 10 सीटों पर विजय हासिल करेगा।
2: उम्मीदवारों को लेकर जो है शीर्ष नेतृत्व में चर्चा हो रही है, उम्मीदवार तय मंथन किया जा रहा है, जल्द ही हम लोग सार्वजनिक करेंगे। जिस तरह हम लोगों ने पांचों सीट राज्यसभा का चुनाव जीते थे, उसी तरह 10 सीट जो है विधान परिषद का चुनाव जीतेंगे।
0: आईपीएल क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज निवर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच हो रहा है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बॉलिंग का फैसला किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बिहार का किया विशेष उल्लेख, सत्तू और जरदालू आम की चर्चा की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भागलपुर में विक्रमशिला पुल और गंगा पथ परियोजना का किया निरीक्षण, 203 करोड़ रुपए की लागत वाली 84 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आईपीएल क्रिकेट 2026 का फाइनल आज, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कैमूर जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: कैमूर जिले में बीते कुछ दिनों से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। अचानक मौसम में आए बदलाव से एक तरफ जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आंधी पानी के दौरान तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने से कई इलाकों में कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। वहीं आंधी की वजह से जिले के विभिन्न हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। बीते दिनों जिले में वज्रपात की घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे नहीं रहने की अपील की है। इधर समय समय पर हो रही बारिश के कारण जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को मौसम में आए इस बदलाव से काफी राहत मिली है। इधर जिले के किसानों ने रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होते ही खेतों में धान का बिचड़ा डालकर खरीफ फसल की खेती की शुरुआत कर दी है। कृषि विभाग ने इस बार जिले में 1,40,000 हेक्टेयर भूमि में धान की रोपनी का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि बिचड़ा डालने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर उन्नत प्रजाति के धान का बीज बहुत जल्द मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल की खेती के लिए किसानों को निर्धारित दर पर उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। श्री कुमार ने किसानों से अपील की है कि विभाग द्वारा निबंधित दुकानों पर यदि निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल कृषि विभाग को दें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
3: यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से ज्यादा मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करता है तो तत्काल इसकी जानकारी आप कृषि विभाग के पदाधिकारी को दें ताकि इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
2: राज्य सरकार आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 2 जून को कैमूर जिले में विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविर में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के जिले के दौरे पर आने की संभावना है। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने मां मुंडेश्वरी धाम सहित अन्य स्थानों का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया। इधर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं को त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार सह जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर अपनी समस्याएं रख रहे हैं। जिलाधिकारी द्वारा बीते शुक्रवार को आयोजित जनता दरबार में कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विकसित भारत समृद्ध बिहार योजना के तहत किसानों को डिजिटल पहचान देने के लिए जिले में फार्मर रजिस्ट्री का विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि 12 मई से शुरू किया गया यह अभियान आगामी 30 जून तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिले के सभी वसुधा केंद्रों पर किसानों को निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि किसान अपने पंचायत के कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार एवं राजस्व कर्मचारी से संपर्क स्थापित कर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कैमूर जिले में ज्ञान भारतम मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस क्रम में जिले में 346 दुर्लभ एवं प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियों की पहचान की गई है। मिशन के तहत इन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण पर उन्हें संरक्षित किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों के लिए इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तकरण छात्र योजना के तहत जिले के 127 दिव्यांगों को बैटरी संचालित साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। बीते दिनों जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने समाहरणालय में आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में दिव्यांगजनों द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान डीएम ने 127 पात्र दिव्यांगजनों के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें शीघ्र ही बैटरी संचालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी।

0: जिले में बकरीद का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग भभुआ शहर स्थित जगजीवन स्टेडियम, दरगाहों एवं मस्जिदों में पहुंचकर नमाज अदा की तथा एक दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने भी बकरीद के अवसर पर अपने पैतृक गाँव नौघरा की मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं त्योहार को लेकर जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 176 स्थानों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गयी थी।
1: अभी आप सुन रहे थे कैमूर जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता श्रीकांत पांडे।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
3: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:52 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार और कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी। जी हाँ, मौसम कुछ कह रहा है, इसका भी ख्याल रखा जाए क्योंकि कल से जून का महीना है और वैसे मौसम विभाग ने अलर्ट भी कर रखा है। तेज आंधियाँ, गरज के साथ छींटे और बढ़ता हुआ तापमान, सब कुछ सबका सामना तो करना पड़ेगा। तो घरेलू शीतल पेय तैयार रखिए और सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए। आइए हम गीत सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले बादल फिल्म का एक नगमा हमारे श्रोतागण सुनना चाह रहे हैं ईमेल के माध्यम से। तो अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह की आवाज़ें हैं, समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है अनु मलिक ने और फिल्म है बादल। और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। और नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से आप हैं अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रवीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर विहार से आप हैं मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। और ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से हमारे श्रोतागण कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण और जय श्री ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। एक और फरमाइश इस गीत के लिए है नीवेरिया सासाराम से कुमार माधवेंद्र, अमरेंद्र किशोर और यश। चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश का ये नगमा बादल फिल्म से।

तो अभी आपने अनुराधा पौडवाल के साथ सुखविंदर सिंह को सुना, और अब श्रोताओं आइए, हमारे श्रोता सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को लैला मजनू फिल्म में। साहिर रिधानवी ने गीत लिखा है, धुन तैयार की है मदन मोहन साहब ने, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइशें आप सबकी हैं ईमेल के माध्यम से। जी हाँ, आप हैं व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, और बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप भी। जी हाँ, आप हैं पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जमा मस्जिद रोड गोगावा से आप हैं हाजी इस्ताक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। चलिए हम आपको सुनवाते हैं लैला मजनू फिल्म का ये नगमा इन शब्दों के साथ कि वो मेरी वफाओं का हिसाब क्या देगा, जो खुद ही सवाल है वो जवाब क्या देगा। लीजिए सुनिए।

0: कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के पहले छोटा सा अंतराल।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: उमराओ जान, जी हाँ, ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। शब्द रचना है शहरयार की, सुरों में ढाला है खयाम ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। जी हाँ, आप हैं फुटानी चौक नरहन स्टेट समस्ती।

से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन पराशर, आराध्या और लल्लू पंडित जी, भोपाल बाड़ी उदयपुर राजस्थान से ललित चौरड़िया और स्नेहलता जैन ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। और साथ ही साथ आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, और नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं सोहन जोशी जी और पायल जोशी, ग्राम पीपरी पोस्ट कुणवा मोकर से इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है, और इस गीत को सुनना चाहते हैं अशोक चौबे, बबलू चौबे, पीयूष चौबे और समस्त चौबे परिवार की ओर से यह फरमाइश आई है। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनने के लिए

संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं सोहन जोशी जी और पायल जोशी, ग्राम पीपरी पोस्ट कुणवा मोकर से इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें मिली है और इस गीत को सुनना चाहते हैं अशोक चौबे, बबलू चौबे, पीयूष चौबे और समस्त चौबे परिवार की ओर से यह फरमाइश आई है। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनने के लिए कंपनी सराय सासाराम के श्रोतागण की ओर से एक फरमाइश है, नवीन दुबे, परमेंद्र सिंह, राहुल पांडे और आपके मित्रगण की ओर से ये फरमाइश है। हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद का ये गीत, लीजिए सुनिए।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कार्यक्रम का अगला गीत बागी फिल्म से, जिसे अभिजीत और कविता कृष्ण मूर्ति ने गाया है। समीर के लिखे गीत की तर्ज बनाई है आनंद मिलिंद ने और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी श्रोतागण। कलघर से आप हैं अशोक पांडे, रितेश पांडे और समस्त पांडे परिवार की ओर से ये फरमाइश आई है। और साथ ही साथ इसी गीत को सुनने के लिए हमें कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय ने भी मेल किया है। और दतरेंगी से आप भी सुनना चाहते हैं, आप हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और आपके मित्रगण। और दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल के साथ। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनय जायसवाल ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। साथ ही साथ राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से पार्थ रेडियो क्लब की ओर से। और नहौना से इस गीत को सुनना चाहते हैं अजय कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह और आपके ढेर सारे दोस्त डमरू कलाकार। लीजिए सुनिए अपनी फरमाइश का ये नगमा।

जी हाँ, इस गीत को सुनना चाहते थे आप भी। आप हैं ग्राम नहौना सासाराम से भरत सिंह, धर्मराज सिंह, डॉक्टर अनिल, जयनाथ सिंह, जगदीश सिंह, दशरथ सिंह, बिमला देवी, मास्टर अनिल, रविंद्र सिंह और डमरू कलाकार। चलिए श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं कामचोर फिल्म का एक नगमा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। इंदिवर की शब्द रचना है, स्वरबद्ध किया है राजेश रोशन ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीतामुनि देवी और जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे जी। पटेल नगर मालौट से आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। और इसी गीत के लिए हमें गांव फ्रांसी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने भी फरमाइश की है। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और डब्बू बब्बू ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आइए सुन लेते हैं आपकी फरमाइश का ये गीत।

हम दिल दे चुके सनम, जी हाँ ये नाम है उस फिल्म का जिसका गीत हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं। कविता कृष्ण मूर्ति और साथियों की आवाज़ों में महबूब के लिखे गीत की तर्ज बनाई है इस्माइल दरबार ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। आप हैं ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़, और बागपत उत्तर प्रदेश से आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, और नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नोहाकर, निर्मला नोहाकर, विशाल नोहाकर और सोपान तायड़े ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर से आप हैं नारायण इंगले, आशीष मुरहेकर, और प्रतिष्ठान रेडियो श्रोता संघ नेहरू चौक पैठण की ओर से एक फरमाइश आई है। श्रोता हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, और जालना शहर से आप हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव और सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव, और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी की भी फरमाइश आई है इस गीत के लिए। और साथ ही साथ उत्तम नगर दिल्ली से आप हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से आप हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। और एक और फरमाइश इस गीत के लिए है गांव नथाना पंजाब से आप हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, और कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजयालक्ष्मी सावनकर और राजेश राकेश ऋषिता ने भी इस गीत को सुनना चाहा है। आइए सुन लेते हैं आपकी।

और कार्यक्रम का समापन सरस्वती चंद्र फिल्म के एक गीत से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोतागण। आप हैं ग्राम पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया। वंडिंग खेड़ा पंजाब से आप हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, साबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। और आप हैं कांति निकेतन राजनगर ओल्ड लिसनर्स ग्रुप की ओर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, रुद्र गुप्ता, शारदा गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से हैं रानी मुकेश गुप्ता, लक्ष्मी गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, कुसुम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी, और सकीबा आलिया, इब्राहिम कमाल, मिराज निसार, पंकज कुमार ने हमें मेल किया है आकाशी सासाराम से, और इसी गीत के लिए मेल आपका भी आया है। आप हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश गौहाड़कर, सुमित गौहाड़कर, कुमारी ध्वनि गौहाड़कर परी और प्रिंस एकांश गौहाड़कर। और आखिरी फरमाइश है आपकी, आप हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम का आखिरी नगमा, लीजिए सुनिए।

श्रोताओं, सरस्वती चंद्र फिल्म के इसी नगमे के साथ ही ई मनपसंद कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार संध्या। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी

0: वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया, जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
0: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
1: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की, जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
0: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
1: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
0: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया, जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाव एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
2: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर

0: दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को एक वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जन सेवा के क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in।

0: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले दो दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम लोकधारा।

तो श्रोताओं, ये थे नीलेश्वर मिश्रा और आपने शिव भजन सुना। आइए सुनते हैं, एक पूर्वी गायक कलाकार हैं केसरीनाथ भगत और साथी।

बालेश्वर प्रसाद और साथियों की गाई इसी रचना के साथ ही लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आइए सुनते हैं महफिल के तहत कुछ गजलें और गीत।

अभी आपने भूपेंद्र को सुना और यह है कार्यक्रम की अगली रचना। गायक कलाकार हैं गुलाम अली।

तो अभी आपने गुलाम अली को सुना, शब्द कार थे संत दर्शन सिंह जी, और कार्यक्रम का समापन मेहदी हसन की गई इस रचना से जिसे लिखा है हसन इमाम ने।

मेहदी हसन की गाई इसी रचना के साथ ही गज़लों की हमारी आज की ये महफिल अब यही संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में विविध भारती के मुंबई केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म सीआईडी।

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा गया था।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।

राज खोसला ने अपनी शैली से हटकर, टाइल्स से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साहब।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

0: चली है चोरी, हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताज़ा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। रस रंग के तहत आइए सुनते हैं कुछ एल्बम सॉन्ग्स।

तो अभी आपने नुसरत फ़तेह अली खां की रचना सुनी और अगला एल्बम सॉन्ग्स सोनू निगम की आवाज़ में।

तो श्रोताओं, अभी आपने अमित कुमार और सपना मुखर्जी को सुना। आइए एक एल्बम सॉन्ग लेते हैं उदित नारायण की आवाज़ में।

तो श्रोता हूँ, अभी आपने उदित नारायण को सुना और इसी एल्बम सॉन्ग के साथ ही आज का रस रंग कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट तरानी। चित्रपट तराने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को संजय चतुर्वेदी का सप्रेम नमस्कार। एक एक पल घड़ी की सुइयां आगे चलती हैं, वक्त निकल पड़ता है, रात चाहे जितनी भी काली हो, अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सुबह तो आएगी ही। इसी उम्मीद पर तो दुनिया आगे चल निकलती है। मेरी तकदीर में जलना है तो जल जाऊंगा, मैं तेरा वादा तो नहीं जो बदल जाऊंगा।

वो कह के चले, इतनी मुलाकात बहुत है। मैंने कहा, रुक जाओ, अभी रात बहुत है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरा दिल भी शौक से तोड़ो एक तजुर्बा और सही, लाख खिलौने तोड़ चुके हो एक खिलौना और सही।

इससे तो वो अंधेरा ही भला था, कदम राह पर थे। ये रोशनी खींच कर लाई है मंजिल से बहुत दूर मुझे। मौसम

तो श्रोताओं, अभी आपने किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर को सुना और इन्हीं नगमों के साथ ही चित्रपट तराने कार्यक्रम से संजय चतुर्वेदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

एक नज़र हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों पर। प्रातःकालीन प्रसारण सभा में 7:30 पर आप सुनते हैं नित्य प्रति कार्यक्रम नमस्ते रोहतास, और 8:20 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन आप सुनते हैं। सुबह 8:45 पर और 9:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत मालिका।

कल 10:05 पर हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन, और 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी।

रसधार के अंतर्गत भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स आप सुनते हैं 10:45 पर और सांध्यकालीन प्रसारण सभा में 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत कार्यक्रम वंदन। बहनों का प्रसारण घर

आंगन आप तक पहुंचेगा 5:30 पर और संध्या 6 भोजपुरी लोकगीत तथा 6:05 पर आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी समाचार बुलेटिन सुनिएगा।

श्रोताओं, अब एक नज़र कल के मौसम पूर्वानुमान पर। जी हाँ, कल का मौसम शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक एवं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा में नमी 49% हो सकती है। तो जहाँ भी रहिए, अपना रखिए ख्याल, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से प्रसारित समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वाला शेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वला शेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्वी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता

0: पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
2: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
1: Prime Minister Narendra Modi will hold discussions with Myanmar President Ou Min Aung Hlaing in New Delhi tomorrow. The entire gamut of relations between Myanmar and India, including security and connectivity, will come up for discussions during the talks. National Security Advisor Ajit Doval called on the visiting dignitary in Delhi this evening. The Myanmar President arrived at Gaya in Bihar yesterday on a five-day visit to India. Union Minister for Housing and Urban Affairs and Power, Manohar Lal, today announced a series of initiatives to strengthen urban sanitation and power infrastructure in Tripura. Addressing a joint press conference in Agartala with Tripura Power Minister Ratan Lal Nath, the Union Minister said financial assistance will be provided to upgrade waste management systems in the state. Earlier in the day, Union Minister participated in a mega event in Agartala to mark the 6th anniversary of the Pradhan Mantri Street Vendors Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme. The Central Board of Secondary Education CBSE has said an expert team of cyber security professionals from various government agencies and Indian Institutes of Technology has been deployed to secure the OnMark portal, which is its on-screen marking OSM system utilized for evaluation of class 12 answer sheets. In a social media post, the board